0: is Leica Gold.
1: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान
2: देखिए, दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग,
1: डेजर्ट सफारी,
2: यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम।
1: साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे।
2: तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 020-8574-8410, दैट्स 8574-8410।
0: साफो ट्रेवल, at all protected.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
3: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
3: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
5: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
6: क्लासिक नगमे आपके अपने लाइका गोल्ड पर।

0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे।
1: सोता है, बहुत जागा है ना।
0: ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे। कौन है जो

0: भोले भाले ललुआ
1: बोले बोले बोले बोले बोले बोले
0: भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी।
2: यही खा के तो जवान होगा बेटा।
0: भोले भाले ललुआ खाए जा रोटी बासी, बड़ा होके बनेगा साहेब का चपरासी। खेल खेल खेल माटी में होली खेल, गाल में गुलाल है न जुल्फों में तेल।
3: अरे अपनी भी जवानी क्या है सुनते है

0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी।
1: जा भग भग।
0: सजनी तू काहे आई नगरी हमारी। हरे

तम नीच हुकुम लिख दुख सुख पाई है, एक ना हुक्मी बख्शीश एक हुक्मी सदा भुआई है। हुक्मे अंदर सबको बाहर हुक्म ना कोए, नानक हुक्मे जे बुझे ताहो मैं कहे ना कोए। गावे को तान होवे किसे तान, गावे को दात जाने निशान। गावे को गुण वडियाईया चार, गावे को विद्या विखम विचार। गावे को साज करे तनखे, गावे को जी लै फिर दे। गावे को जापे दिसे दूर, गावे को वेखे हादरा दूर।

सो मैं विसर न जाए। जे जुग चारे आर जा होर दसूनी होए, नवा खना विच जानी है नाल चले सब कोए। चंगा नाव रखाए कै जस कीरत जगले, जे तिस नदर ना आवे ता वात ना पुछे के। कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे, नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे। तेहा कोई न सुजई जे तिस गुण कोई करे सुनिए।

मन बुद्ध मन्ने सगल पवन की शुद्ध मन्ने मोह चोटा ना खाए मन्ने जम के साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्ने मार्ग ठाक ना पाए मन्ने पत्स्यों प्रगट जाए मन्ने मग ना चले पंथ मन्ने धर्म सेती संबंध।

लख दरियाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावे साई बलिकार तू सदा सलामत निरंकार असंख जप असंख भाव असंख पूजा असंख तपताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रहे उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह पक्षार असंख मोन लिवलाए तार कुदरत कौन कहा।

मूर्ख अंध गोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाए जोर, असंख गलवड हत्या कमाए, असंख पापी पाप कर जाए, असंख कूड़े यार कूड़े फिराए, असंख मलेच्छ मल भक खाए, असंख निंदक सिर करे भार, नानक नीच कहे विचार, वारिया न जावा एक वार, जो तुद भावे साई बलिकार, तू सदा सलामत निरंकार, असंख नाव असंख थाव, अगम अगम असंख लो, असंख कहे सिर भार होए।

तेरे भगत रसाले होर के ते गावन से मैं चितनावन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है भी हो।

तिस दी वड़ियाई जो तिस भावे सोई करसी हुक्म ना करना जाई सो पातशाह साहिब नानक रहन जाई।

जात जुग जुग एको वेश उगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजे नाद आप नाथ नाथी सब जाकी रिद सिद अवरा साध।

अनाहत जुग जुग एक ओवेश। आसन लोय लोय भंडार जो कुछ पाया सो एका वार कर कर वेखे सृजनहार नानक सच्चे की साची कार। आदेश तिसे आदेश आद अनिल अनाद अनाथ जुग जुग एको वेश। एक दूजी बो लख होवें लख होवें लखवीस लख।

जोर जोर ना जीवन मरण ना जोर जोर ना राज माल मंसोर जोर ना सुरती ज्ञान विचार जोर ना जुगती छुटै संसार जिस हथ जोर कर वेखे सोए नानक उत्तम नीच ना कोए राती रुती चित्ती वार पवन पानी अग्नि पाताल तिस विच धरती थाप रखी धर्मसाल तिस विच जी जुगत के रंग तिनके नाम अनेक अनंत करमी करमी होए विचार सच्चा आप सच्चा दरबार तिथे सोन पंच परवान नदरी करम पवै निशान कच पक

0: लाइका गोल्ड travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
1: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड
1: विजिट travelhubworld.com
2: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208-507-7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल रूम साइज लेमिनेट्स 30 pounds से शुरू तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है चूकिए नहीं विजिट हिमालय कारपेट्स .com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल
4: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
5: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823

0: Experienced tour operators for air, coach and cruise holidays. So now, whenever you plan for a holiday, plan with Serene Holidays.
1: Call Deepthi Pandya today.
0: 0116-266-2481. For more information, log on to sereneholidays.co.uk.
2: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क है ना.
3: वेल शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स, क्रंची टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
2: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
4: Discover Malta and Gozo with a twin center island escape. Fly from a choice of UK airports year round and enjoy 3 nights in Malta, a ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and Holidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
5: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewellers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewellers, also at Belgrave Road, Leicester.

0: Raju's Morning Mantra, presented by Mantra Holidays, your friendly holiday partner for UK, Europe and other destinations. For your memorable holidays according to your taste and budget, call 0203-773-633 to book your dream holiday. This is Like a Gold. TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
1: TravelHub, best service with unbeatable price.
0: At all protected.
1: Visit TravelHubWorld.com.
2: 0730098823 नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 0730098823.
3: लंदन, आर यू रेडी? राघव इवेंट्स प्रेजेंट्स टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
4: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
5: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
4: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
5: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
4: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
6: चलो जाइए एक नवा सफर पर सीरीन हॉलिडे साथे.
7: सीरीन हॉलिडेज अपनी पूर्व अफ्रीकाना स्थलों ने मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दार एस सलाम साथे जिंजा अने मचिसन फॉल्स.
8: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ
7: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
8: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
7: 0116266481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो serenehollidays.co.uk पर.
9: हे फ्रेंड्स के साथ वीकेंड पार्टी हो या खुद के साथ नेटफ्लिक्स एंड चिल, अ देसी तड़का इज टोटल रिस्क, है ना?
10: वेल, शी इज टॉकिंग अबाउट जयमीन फूड पोटैटो चिप्स. क्रंची, टेस्टी एंड टोटल देसी स्वाद इन चार मजेदार फ्लेवर्स.
9: क्रंच कैन नॉट वेट, सो विजिट योर नियरेस्ट एथनिक स्टोर एंड ग्रैब योर जयमीन फूड्स पोटैटो चिप्स नाउ.
11: एविक्शन, टेनेंट डिस्प्यूट, प्रॉपर्टी का मसला, कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन लैंडलॉर्ड्स और टेनेंट्स के लिए फास्ट एक्शन लेते हैं और रेसिडेंशियल और कमर्शियल कन्वेंसिंग प्लस कमर्शियल लीजेस हैंडल करते हैं. अभी कॉल करें 0208-907-2444. दैट्स 0208-907-2444.
12: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
13: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे, जहां मळशे शांति, भक्ति अने आनंद, अने साथे आईफिल टावर, सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सितंबर ना. मंत्रा हॉलिडेज, कॉल करो 0203-773-633. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा?
14: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Download the Like a Radio mobile app. Listen live and listen back to your favorite shows.
15: Hey there, मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट. Catch me on my show Gold Afternoons with tributes, अनसुनी बातें, राग आधारित गाने on Like a Gold and Like a Radio Midlands from 1 PM to 4 PM.
16: Time for Listener of the Week.
17: Hi, my name is Pritesh and I'm the Listener of the Week on The Breakfast Show. I love listening into the Leica Radio Network because Gadgil is the best. Listen to my playlist from Monday to Friday only on The Breakfast Show with Gadgil on Leica Gold and Leica Radio Midlands.

0: कंटेनर्स
1: सेट को फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
2: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3444-24-hour line।
3: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, LVT फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
4: Dad,
5: what's wrong, beta?
4: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
5: I will run down to the money exchange now.
4: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
5: Oi, balle balle! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
4: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
6: Hare Krishna.
7: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742045154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM
1: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
2: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
1: एट ऑल प्रोटेक्टेड
2: विजिट travelhubworld.com
3: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium, light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away from the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
4: वीजा प्रॉब्लम इंतजार मत करें हर डिले आपको महंगा पड़ सकता है कैंटन सॉलिसिटर्स लंदन असाइलम केसेस अपील्स स्किल्ड वर्कर वीजा स्पॉन्सरशिप लाइसेंस और रिफ्यूजल पर फास्ट काम करते हैं अभी कॉल करें 0208-907-2444 दैट्स 0208-907-2444
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना 5-course lunch सिर्फ £35 जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड तो देर किस बात की बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823

0: ਤੇ ਗੋਲਗੱਪਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ।
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
3: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए। दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए। आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू।
4: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ। एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज। व्हाट्स Your travel mantra.
5: Like a Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan. Gold Breakfast with Kajal.

0: Looking to boost your career or just starting out? As the experts in online learning, the Open University has over 200 qualifications to choose from, like business, psychology, computing, and many more. With tutor support and courses that fit around your life, getting those in-demand skills employers are looking for isn't so far away. Search the Open University to find out more. The Open University. The future is open.
1: Weather is brought to you by Southall Travel, taking you to the best destinations in the world.
2: वेरी गुड मॉर्निंग. आज के मौसम पर चर्चा करें. आज के मौसम में पर कोई खास बदलाव नहीं है. टुडे इट विल बी वेरी वार्म एंड ड्राई विद प्लेंटी ऑफ सनी स्पेल्स एंड द ऑड पैच ऑफ क्लाउड दिखाई देंगे आसपास. बारिश की आशंका नहीं है. मैक्सिमम टेम्परेचर लंदन में 30 डिग्री सेल्सियस और लेस्टर में 29 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा.
1: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410.
3: मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: Good morning. स्वागत है आपका मनोरंजन की दुनिया में। लाइका रेडियो नेटवर्क पर गोल्डन गीतों का खजाना लाइका गोल्ड रेडियो और उस पर मनोरंजन की महफिल। माय नेम इज रवि शर्मा एंड आई एम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश टाइम। वैसे भाई दुनिया भर में जहां जहां आप ये प्रोग्राम सुन रहे हैं हमारे साथ जुड़े हैं, भावभीना स्वागत आपका। मंगलवार वर्ष 2026 के जुलाई महीने की 28 तारीख है आज। और बहन भाइयों, एक और मनोरंजन, एक और कार्यक्रम, एक और मुलाकात, संगीत की सौगात रवि शर्मा के साथ। जुड़े रहिएगा। शुरुआत करेंगे शायरी से और फिर आगे बढ़ेंगे समाचारों के साथ, चिंतन की सौगात। फिलहाल तो ये कहना चाहेंगे कि अंधेरे दे के मुझको झिल मिलाती कहकशां ले ले, तुझे क्या चाहिए दोनों जहां दे दे। जगह दिल में जरा सी दे के मुझको, मुझसे बदले में नदी दरिया समंदर ले, जमी ले आसमां ले ले। तलब कम है तेरी जालिम, ये मेरा जर्फ ज्यादा है। जो मांगा भी तो दिल मांगा, अरे तू मेरी जान दे दे। हर एक खुश रंग है दुनिया की तेरे नाम कर दूंगा, सितारे चांद कलियां फूल ले ले, गुल सिता ले ले, तू मेरी जान दे दे।
1: Let's return to the biggest hits back to back. Sponsored by TravelHubWorld.com. For the best service and unbeatable prices, visit TravelHubWorld.com. TravelHubWorld.com.
2: हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता.
3: Travel Hub.
2: At all protected.
1: Leica. Non-stop classics. Leica Gold.

0: ऐसी धमाकेदार शुरुआत होती है मनोरंजन प्रोग्राम की। वही हर रोज शायरी के लिए खुलती है डायरी और फिर बजता है संगीत जिस पर आप थिरकने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन अगर गाड़ी चलाते हुए भैरव भाई ये प्रोग्राम सुन रहे हो तो भाई ऐसा मत कीजिएगा, सावधानी से गाड़ी चलाइए और सड़क पर अपना और दूसरों का जीवन सुरक्षित बनाइए। दफ्तर में है डोंट वरी, दफ्तर में भाई कुर्सी पे बैठे बैठे या उठकर खड़े होकर के आप डांस करना शुरू कर दें। बॉस कुछ कहे तो मेरा नाम ले देना, कह देना रवि शर्मा ने बोला है, हाँ आगे मैं देख लूंगा। एक ने पूछा था क्या देख लेंगे, बॉस को देख लेंगे, दूर से देख लेंगे क्या है। तो साहब दो गीत हमने परोसे, मुझे यकीन है कि हमारे श्रोताओं को पसंद आए होंगे। पहला गीत था उतरा ना दिल में कोई, कोई नहीं उतरा, बस कैसे उतरते साहब पहले ही भीड़ थी बहुत सा। और दूसरा गीत ताकि हो ताकि, ये हिम्मत वाला फिल्म से लिया गया था। तो साहब गीत सुनने के बाद अब हम पहला काम ये करते हैं कि आपको पाउंड का रेट बताते हैं भारतीय करेंसी में।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके इस समय क्या रेट दे रहे हैं भाई, एक पाउंड के बदले वो दे रहे हैं 127 रुपए और 5 पैसे, यस 127.05 रुपीज, एंड यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। Terms and conditions apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
2: It's official. Tesco Pet Insurance is the dogs, biscuits. At Tesco, we love pets, and we've been awarded a Which Best Buy for all our lifetime dog and cat policies with over £5,000 cover. We offer a range of different policies and cover levels, so your cat gets the cream of pet insurance. To get a quote, search Tesco Pet Insurance. Cats and dogs aged 8 weeks or over. Monetary limits, excesses and exclusions apply. Provided by Pinnacle Insurance Limited.
3: Yeah, yeah, yeah, like a goal.

0: रफी साहब की आवाज में सुना आपने ये मेलोडियस ट्यून पर आधारित गीत।
1: Feel good track brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
0: और लीजिए साहब, अब मुड़ते हैं, समय हुआ जा रहा है खबरों की ओर जाने का। वैसे नए प्रधानमंत्री ने अपना कार्यभार अच्छी तरह संभाल लिया है यहाँ नंबर 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, और भाई कुछ नई घोषणाएं भी सामने आ रही हैं, जिनमें एक तो जेलों में भीड़ को कम करने के लिए अपराधियों को अर्ली रिलीज किया जा रहा है, जल्दी छोड़ा जा रहा है। एक ज़माना था हम सुना करते थे कि भाई अच्छे कैरेक्टर की वजह से, अच्छे चाल चलन की वजह से किसी अपराधी को जल्दी रिहा किया जाना है या जा रहा है। अब जेलों में बढ़ती भीड़ के कारण अपराधियों को रिलीज किया जा रहा है, भाई अब ये भी सामने आने लगा है। और भी कुछ नीतियां प्रधानमंत्री की जो है वो सामने आ रही हैं, जैसे पीएम अनाउंसेस स्कूल्स शेकअप टू कीप यंग पीपल ऑफ बेनिफिट्स, भाई विचार है। और हिंदुस्तान से आने वाली खबरों में क्या है, वहाँ पार्लियामेंट के भाई इस सेशन में कुछ गंभीर बिल पेश किए जा रहे हैं जो उन समस्याओं को टारगेट करते हैं जो आजकल बहुत चर्चा में हैं। लेट्स फाइंड आउट व्हाट वी हैव इन द न्यूज। लाइका रेडियो नेटवर्क, अब आप रवि शर्मा से खास खास समाचार सुनिए। भारत की लोकसभा में पेपर लीक से जुड़े बिल पर चर्चा शुरू हो गई है। लोकसभा में आज दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े पब्लिक एग्जामिनेशन, इस पर चर्चा शुरू हो गई है। इस बिल में 2024 में बने कानून में थोड़ा बदलाव लाने का प्रस्ताव है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सभी पार्टियां इस बात पर सहमत हैं, राजी हैं कि 6 घंटे की चर्चा को 2 घंटे और बढ़ाकर 8 घंटे कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि इसे बढ़ाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर 8 घंटे से भी ज़्यादा समय की जरूरत पड़ी तो हम 10 घंटे की चर्चा के लिए भी तैयार हैं, लेकिन ये बिल बहुत इम्पोर्टेंट है, पास किया जाना जरूरी है। भारत के असम राज्य में बाढ़ में कई गांव डूबे हुए हैं। ऊपरी असम में हालात काफी गंभीर हैं। असम राज्य की आपदा प्रबंधन विभाग ने कल देर शाम बाढ़ की स्थिति को लेकर के जो रिपोर्ट जारी की है उसमें मामूली सुधार के दावे किए गए हैं, लेकिन ऊपरी असम के 3 जिलों में जो सिचुएशन है उसको नॉर्मल होने में कई महीने लग जाएंगे, ऐसा बताया जा रहा है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट, भाई जो जंतर मंतर पर तो समाप्त हो गया है लेकिन उसकी चर्चा और उसके जो असरात हैं वो अभी भी महसूस किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गैर आपराधिक रिकॉर्ड वाले, जो नॉन क्रिमिनल ऐसे हैं जिनका पीछे कोई रिकॉर्ड नहीं है, ऐसे स्टूडेंट्स को जो प्रोटेस्ट में थे शीघ्र रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। कानूनी खबरों के विश्लेषण की वेबसाइट लाइव लॉ के मुताबिक अदालत ने कहा है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस की कथित ज्यादतियों के आरोपों की निष्पक्ष और स्वतंत्र जांच की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों को नोटिस जारी करके इस मामले में जवाब मांगा है। मशहूर फार्मा कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन, ये सुनी होगी कभी भाई, इस कंपनी के बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे पैकेजेस पर इसका देख करके भाई दवाइयों की दुकानों में इसकी काफ़ी प्रोडक्ट्स होती हैं। जॉनसन एंड जॉनसन ने उन हजारों मुकदमों को निपटाने के लिए $5.5 अरब तक देने की पेशकश की है, जिनमें आरोप लगाया गया था कि कंपनी का बेबी पाउडर और टेलकम वाले प्रोडक्ट ओवेरी कैंसर की वजह बन रहे हैं। और कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के हिस्से में आया एक और गोल्ड मेडल, शर्मिला धनखड़ ने पैरा एथलेटिक्स में इतिहास रच दिया है। शर्मिला धनखड़ ने कॉमनवेल्थ गेम्स के पैरा एथलेटिक्स में भारत के लिए ये पहला गोल्ड मेडल जीता है। वहीं लॉन्ग जंप में खिलाड़ी सर्वेश कुशारे, बल्लूरी अजय बाबू और ज्ञानेश्वर यादव ने भी एक एक सिल्वर मेडल जीतकर भारत के मेडल्स की संख्या में तादाद में इजाफा किया है। फ्रांस के जंगलों में आग अभी भी लगी हुई है। देश के दक्षिण पश्चिमी शहर बोर्डो से ये सिर्फ अब 15 किलोमीटर दूर रह गई है। आग बुझाने की तमाम कोशिशें जारी हैं। विमान से पानी की बौछार डाली जा रही है, पर आग पर पूरी तरह से कंट्रोल पाने में अभी पूरी सफलता नहीं मिली है। भारत से आने वाली खबरों में बिहार के सिवान में स्टूडेंट्स के ग्रुप की ओर से बिहार पुलिस के जवान का AK-47 राइफल तानने का एक वीडियो वायरल होने के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD के नेता तेजस्वी यादव ने CM सम्राट चौधरी पर बिहार में पुलिस स्टेट चलाने का आरोप लगाया है। नेतन्याहू की गिरफ्तारी के सवाल पर न्यूयॉर्क के मेयर का अब बयान आया है। न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने इजरायली प्राइम मिनिस्टर बिन्यामिन नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने के सवाल पर रिएक्ट किया है। ममदानी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू के साथ बयानबाजी या आरोप प्रत्यारोप में पड़ने में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। नेतन्याहू के बारे में जुड़े सवालों को टालते हुए उन्होंने ये बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी प्रायोरिटी न्यूयॉर्क के सभी निवासियों की सिक्योरिटी निश्चित करना है। आपको बता दें कि जोहरान ममदानी ने उन्हें न्यूयॉर्क आने पर इजरायली प्राइम मिनिस्टर के न्यूयॉर्क आने पर गिरफ्तार करने की बात कही थी। ट्रंप का दावा। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी तनाव को लेकर काफी दोस्ताना बातचीत चल रही है। लगातार तीसरे दिन भी दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर कोई हमला नहीं किया है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बातचीत करते हुए ट्रंप ने कल सोमवार को कहा कि मुझे लगता है कि इस जंग को खत्म करने की अच्छी संभावनाएं बन रही हैं। उधर ईरान ने इस बात से इनकार किया है कि अमेरिका के साथ उसकी कोई सीधी बातचीत हो रही है। ये थे आज के प्रमुख समाचार। समाचार समाप्त होते हैं।
1: This is Like a Gold. Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.
4: दोस्तों, आज इस महफिल में कई मस्ताने हैं, एक शम्मा दो परवाने, एक हसीना और दो दीवाने हैं, लेकिन एक है हीरो और एक है जीरो। अब आप ही बताइए, कौन है हीरो और कौन है जीरो?

0: tasty track of the hour sponsor by Coca Noodles. Quick, tasty, healthy flavors. Perfect for my busy day. Available in your nearest convenience store.
1: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands. Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
2: और साहब साउथ ओल्ड ट्रेवल वालों का एक पैगाम है आपके नाम, वो बार बार याद दिला रहे हैं, आज फिर बता रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं। साउथ ओल्ड ट्रेवल, दे आर प्लीज टू अनाउंस दैट द FCDO हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ ओल्ड ट्रेवल फॉर देयर मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स on 02085748410.
1: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at breakfast and drive.
3: Dogs and cats, sure, they need a lot, but they're worth every penny. Still, would be good if you could save a few pennies, right? Well, if you've got a Tesco Club Card, you'll get a Club Card discount on Tesco Pet Insurance. And all policies include VetPhone for peace of mind 24/7. Just search online for Tesco Pet Insurance. Pets age 8 weeks or over, VetPhone provided by Vets Direct Limited. Monetary limits, excesses and exclusions apply. Arranged by Pinnacle Insurance Limited.
4: Ye hai Leica Gold. 10:35 AM.
2: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel, anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
5: TravelHub, best service with unbeatable price.
2: At all protected.
5: Visit TravelHubWorld.com.
6: Packed for the trip? Gifts? Passport?
7: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
6: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
7: Simzy?
6: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
8: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
9: London, are you ready? Raghavens presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
10: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
11: Location. In real estate, location is everything, and this one is a winner.
12: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
11: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
12: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
11: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
12: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
11: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
12: High appreciation.
11: In Dubai.
13: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट मेरा बॉयलर.com। T's and C's apply.

परीक्षा के पेपर लीक हो जाए तो हंगामा हो जाता है, बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो जाता है। लेकिन परीक्षा का पेपर, आई मीन क्वेश्चन पेपर बनाते ही क्यों है यार? वैसे उसी में खड़े खड़े पूछ लो, जवाब नहीं आए तो ठीक है, वो कोई और दूसरा सवाल पूछ लो। ये इम्तिहान नाम की चीज़ ऐसी है भाई, जब हम इम्तिहान देने जाते थे तो कितने टोटके भी करते थे, भगवान को नमस्कार करके प्रसाद बोल के, और रास्ते में कोई पेड़ आता तो उसके पत्तों को ये ढाई पत्ते काट के ईंट के नीचे दबा के, ये बच्चों ने बना रखी थी अपनी अपनी कहानियाँ कि भाई इम्तिहान वाले दिन ये करके जाओ तो क्वेश्चन जो है वो आपकी पसंद के आते हैं।

0: taking you to the best destinations in the world.
1: वेरी गुड मॉर्निंग. आज मौसम की चर्चा करें भाई. 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी की जो है वो चुनौती तो रहेगी. सनी इंटरवल्स एंड जेंटल ब्रीज. मैक्सिमम टेम्परेचर अगर 30 डिग्री लंदन में है तो लेस्टर और मिडलैंड के इलाकों में 29 डिग्री तक तापमान जाएगा.
0: For special rates to India, Pakistan, Dubai, Maldives, Thailand, USA, Canada, Africa, Australia and New Zealand, call Southall Travel 24 hours a day, 7 days a week on 0208 574 8410. Like a
2: gold. Manoranjan with Ravi Sharma.

0: स्वागत है आपका मनोरंजन प्रोग्राम के दूसरे दौर में। ब्रिटिश घड़ियों में सुबह के 11:04 हुए हैं और बहन भाइयों मनोरंजन में ये समय है चिंतन के लिए, निश्चित थॉट फॉर द डे, आज का विचार। और आज चिंतन में हम शामिल कर रहे हैं आलेख दिनेश शर्मा का, दिनेश शर्मा टीटू। कह रहे हैं कि मैं चिंतन भेज रहा हूं लेकिन जानना चाहता हूं, हमने आपका प्रोग्राम सुनना शुरू किया है, क्या श्रावण मास में आप भगवान शिव से जुड़े और कांवड़ से जुड़े भजन सुनवाएंगे? भाई हमारे यहाँ रंग जो है वो यूँ कहिए कि अलग अलग प्लांट से, पौधों से, फूलों से खुशबू ली होती है, सब मिला जुला कार्यक्रम होता है, आप सुनते रहिए वो भी सुनवाएंगे। आप हमारे साथ जुड़े हैं जानकर अच्छा लगा, और भी लोगों को जोड़िए। आइए अब सुनते हैं आज का विचार, एक प्रेरक प्रसंग जिसे हम कहते हैं चिंतन।
1: चिंतन, चिंतन।
0: जिंदगी में अगर कभी ठोकर लगे तो क्या आप वहीं बैठ जाते हैं, आगे चलने से इनकार कर देते हैं या पीछे मुड़ जाते हैं? क्या रिएक्शन होता है आपका? एक बच्चा समंदर किनारे बैठे रो रहा था, वहां से कोई विचारक गुजरा, उसने पूछा बेटा क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने बताया कि मैं आज सुबह से समंदर की लहरों को गिन रहा था, फिर अचानक मैं गिनती भूल गया, पता नहीं कितनी गिन चुका था मैं। उस व्यक्ति ने, उस विचारक ने कहा बेटा एक बात बताओ, जिस पॉइंट पर तुम गिनती गिनना भूल गए थे, क्या वहां पर समंदर की लहरें तट से टकराने से रुक गई थी क्या, खत्म हो गई थी क्या? नहीं, लहरें तो अब भी आ रही हैं, बच्चे ने कहा। तो फिर तुम क्यों रुक गए? जहां जिस पॉइंट पर तुम भूल गए थे, अब ये ऐसा तो है नहीं कि लहरों का आना रुक गया हो, लहरें आ रही हैं, तट से टकरा रही हैं, फिर से गिनना शुरू कर दो। बच्चा सोच में पड़ गया, अरे भाई किसी पॉइंट से सुबह गिनना शुरू किया था, अब फिर से गिनना शुरू कर दो। जो काम बीच में छूट गया, तार टूट गया, फिर से जोड़ दो, फिर शुरू हो जाओ, कामयाबी मिलेगी। बच्चा खुश हो गया, ये तो सोचा ही नहीं था, उसने फिर से लहरों को गिनना शुरू कर दिया। अब जितनी देर गिननी थी उसने गिनी, पर्पस चाहे उसका मनोरंजन रहा हो, कुछ भी रहा हो, लेकिन बहनों भाइयों संदेश एक मिल गया। अगर आप चलते चलते किसी पॉइंट पर ठोकर खाकर रुक जाएंगे तो रुकने से आप मंजिल पर कभी नहीं पहुंच पाएंगे। उठकर कपड़े झाड़कर फिर चलना शुरू कर दो, लहरों को फिर से गिनना शुरू कर दो, फिर से शुरू हो जाओ। अगर आप बैठ गए तो समझो चलना ही जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी, ऐ जिंदगी के राही किस बात की है देरी, फिर शुरू हो जाओ।

0: तुझको चलना होगा, चलना ही तो जिंदगी है, रुकना है मौत तेरी।
1: चिंतन चिंतन
0: चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी। चलते रहिए। आज का चिंतन, आज का विचार, जिसके लिए आलेख भारत से दिनेश शर्मा टीटू ने भिजवाया, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश भाई। जो गीत हमने सुनवाया मन्ना डे व साथियों की आवाजों में था, सफर फिल्म से लिया गया था, जिसे कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया था। और बहन भाइयों, याद दिला दें आपको, चिंतन हर रोज मंडे टू फ्राइडे 11 बजे की खबरों के बाद प्रसारित किया जाता है। आज का चिंतन अब समाप्त होता है।
1: चिंतन चिंतन
2: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: SBI UK यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK, याद दिला रहे हैं भाई, पैसे अपनों को भिजवाना चाहते हैं तो हमारी सेवाओं का फायदा उठाइए, रेट अच्छा चल रहा है। टुडेज रेट इज फॉर वन पाउंड दे आर गिविंग 127.05 रुपीज, 127 रुपए और 5 पैसे। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो SBI UK मोबाइल ऐप, बट रिमेंबर टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
3: Ye hai Leica Gold.

0: भाई शहर को वो रोने की क्या जरूरत पड़ गई, क्या सगाई हो गई। हाँ वो कहती है, कहावत है कि भाई नोट तोड़ाया और गया, यानी अगर एक बार आप नोट को खुला करा लेना और चेंज तो रुकती नहीं है जेब में, फिर नोट तोड़ाया गया और छोरा ब्याया और गया, काम से गया, परिवार से गया, यूं कहो अपने आप से भी गया। मेरी भी सगाई हुई, रोए शहर सारा, तो रोएगी तो वो जो दुल्हन बन के आएगी। बैक टू बैक संगीत के तहत दो गीत हमने सुनवा दिए आपको, और बहन भाइयों अब याद दिला दूं आपको कि एक बजे तक हमारा आपका ये साथ बना रहेगा। इस समय ब्रिटिश घड़ियों में 11:28 हुए हैं।
1: ये है Like a Gold Feel Good Track, brought to you by Dairy Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: मेरी भी सगाई हुई, रोए शहर सारा, अब क्यों? क्योंकि कहते हैं हर किसी की नजर थी इस नौजवान पर।

0: Yes, my darling. Yes, my darling.
1: Feel good track. Brought to you by Derry Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: Leica Gold. Leica Extra Podcast Update.
5: लाइका एक्स्ट्रा पॉडकास्ट, भाई आपको बता दें कि ये हमारे जो पॉडकास्ट है ना, ये नए नए एपिसोड हम ला रहे हैं आपके लिए। इस समय एक और शूटिंग चल रही है बाहर, भाई स्टूडियो हमारा जगमगा रहा है और वो क्रू मेंबर्स जो हैं शूट करने वाले, कैमरे, लाइट्स, साउंड वाले, वो सब तैयार हैं, एक और तैयार हो रहा है। लेकिन इस समय जो नया एपिसोड दिखाया जा रहा है, दैट इज़ पॉडकास्ट एपिसोड 26, ये लाइका के जो कलाकारों के बारे में है। और उसमें भाई दीप राजा वो बात करते हैं मीनल समरे से, फ्रॉम समारिया ग्लोबल फाइनेंस लिमिटेड। बहुत सारी जानकारी फाइनेंस के विषय में आपको उस एपिसोड में मिलेगी। चूँकि ये गाने ज़रूर देखिएगा, हमारे एपिसोड जो हैं अवेलेबल ऑन स्पॉटिफाई, यूट्यूब, अमेजन, एप्पल एंड अदर मेजर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स।
1: लाइका एक्स्ट्रा इज हियर। Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
6: Hi, I'm Clapped, and I'm the opposite of attractive. If you're calling someone a 10, it's definitely not me. I usually show up when someone's appearance becomes the punchline. So if I pop up in your kid's feed, it might be time for a chat. Search Tesco Mobile Online Safety to find out how to start the conversation at home.
7: We know your family matters most. That's why we're happy to be your second most important network. Tesco Mobile. It pays to be connected.
8: Yeah, like a gold.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
9: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
10: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
9: विजिट travelhubworld.com।
11: हिमालय कारपेट की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज एग्रीमेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स, बेड्स, सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं। विजिट हिमालय कारपेट्स.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।

0: Basmati Rice. Disha Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Kenton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: Have you had a bereavement in the family? In times of sadness and grief, Om Funeral Care is there to help and support with all customs and rituals. At Canton Road in West London and Ilford in East London, Om Funeral Care's well-versed priests carry out all the rites and rituals in English, Hindi, Gujarati, Marathi, Tamil and other languages. Contact Kalpesh Patel on 0208-922-3344 at 24 Our line.
2: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राजकचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
3: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्सलो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
2: सच?
3: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
4: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करें 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया now in Ilford.
5: From scenic breaks in Scotland, the Lake District, Devon and Cornwall, to classic European journeys across France, Switzerland, Italy and the Netherlands, Star Tours takes care of every detail, including Indian meals on tour. Well planned, comfortable, trusted. That's the Star Tours experience. Call 0208-900-2323 or visit startours.co.uk.
6: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com। टीज एंड सीज अप्लाई।
7: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
8: When you go abroad, everyone knows the best way to make yourself understood is to just say everything in English, but louder.
9: 4 beers, please, garçon!
8: If only there was a way that could work with your advertising campaign. Well, there is. And you're listening to it. Because when you amplify your advertising with radio, 40 million listeners every week get the message. See radio differently at radiocentre.org.
10: चाय ब्रेक हो या बिजी वर्क डे, सबको चाहिए एक परफेक्ट कप ऑफ चाय।
11: और अब रॉयल चाय लाए हैं स्मार्ट सॉल्यूशन फॉर योर बिजनेस।
10: गेट अ रॉयल चाय वेंडिंग मशीन फ्री, परफेक्ट फॉर कैफेज, रेस्टोरेंट्स, ऑफिसेज, शॉप्स, पेट्रोल स्टेशंस और कम्युनिटी स्पेसेस।
11: रिच ऑथेंटिक टेस्ट एवरी सिंगल टाइम।
10: रॉयल चाय, ब्रूड फॉर बिजनेस।
11: ईमेल नाउ info@royalchaivending.com। लिमिटेड ऑफर, टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
12: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

दिलों का लेन देन भाई उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के बीच हो रहा था आवाज के माध्यम से, लेकिन जिस अभिनेत्री पर ये गीत पिक्चराइज हुआ, मेरा ख्याल हीरो थे सलमान खान और हीरोइन थी आयशा जुल्का। भूले तो नहीं आप इस कश्मीरी ब्यूटी को, आयशा जुल्का। आज के दिन भाई उनका जन्म हुआ था श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर में, और अब तो 54 बरस की हो गई है आज। मेरी मेरी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे टू आयशा जुल्का। आजकल भाई फिल्मों में तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन बहुत फिल्मों में काम किया उन्होंने और अच्छा मुकाम हासिल किया। आयशा जुल्का को जन्मदिन की बधाई देते हुए बता दें कि उन्होंने तेलुगू, बंगाली, कन्नड़, कई भाषाओं की फिल्मों में काम किया। उन्हीं की फिल्म का गीत सुन रहे थे आप। और भाई साथ में हम ये भी बता दें कि अगर आपके घर परिवार में आज किसी का जन्मदिन है तो हमारी ओर से मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स।

0: दिल ही तो है,
1: दुनिया में हमारा दिल ही तो है भाई। इस दिल के बड़े किस्से, बड़ी कहानियां हैं। दिल के सहारे कितनी शायरी हुई है, कितने गीत लिखे गए हैं, कितनी सिचुएशंस बनी है। भैया गीत पसंद किया मानसी ने। मानसी कहती है लवली सॉन्ग, चलिए आपके नाम किया। टोरंटो में उल्लास हमारे साथ जुड़ी है, हमें सुन रहे हैं। और रंजन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हंसा वोरा रमीला पटेल हैरो में हमारे साथ जुड़ी हैं।
2: हाल में जिसने साथ दिया वो एक बेचारा,
1: दिल ही तो साथ देता है। आखिरी सांस तक अगर कोई साथ निभाता है तो वो दिल ही तो है। 2400 घंटे सातों दिन सीने में जो धड़कता है, जो भाई हमारा क्या कहें आपको, बिना कोई मजदूरी लिए हमें जिंदा रखता, दिल ही तो है। दिनेश दीनू दत्ता, आपका संदेश मिल गया। सो नाइस ऑफ यू। अर्जन पम्मी स्लो में सुन रहे हैं, प्रतिभा जी थैंक यू वेरी मच। निर्मला गिरीश ईलिंग में, मीना लखानी जी और बूशी में जगदीश जी, सुनीता शर्मा जी, महेंद्र पटेल, नीला चौधरी, हरविंदर रानी, भरत गंगाराम, राजेंद्र राज, राजीव पटेल, एवरीबॉडी डिजर्व्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
4: Location, location, location.
5: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
4: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
5: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
4: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
5: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
4: And the best part, townhouses and villas, Greens, start from just £711,000.
5: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube, prime location,
4: high appreciation
5: in Dubai.
3: London, are you ready? Raghavendra presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Miyan Chote Miyan this December.
6: Main nikla o gatti leke aaye ho main.
3: One date, one show, Sunday the 20th of December at the OVO Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
7: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
8: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Center, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner, Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
9: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को। सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे। विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
3: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
3: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
3: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
3: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA. SFPRA and regulated by the FCA and PRA.
0: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara, performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio partner, Leica Radio Network.
11: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य BAPS स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ आप पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मड़शे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद मानो डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलीडेज कॉल करो 0203-773-6333 मंत्रा हॉलीडेज व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा
12: Discover Malta and Gozo with a Twin Center Island Escape. Fly from a choice of UK airports year-round and enjoy 3 nights in Malta. A ferry trip to Gozo for another 3 nights and more. Prices start from just £399 per person. For great deals on cruise and holidays, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 0192 388 3100 Atoll Protected.

0: Mamster Golgappe ate Golgappiyan da paani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: मनोरंजन विद रवि शर्मा।
3: और बहनों भाइयों, ये गीत हमें लेकर के चलेगा 12 बजे की खबरों तक। किशोर अवस्था में एक उम्र ऐसी भी होती है भाई, जब लोग, मेरा मतलब नौजवान, अपना प्यार छुपाते हैं। किससे? घर वालों से, माता पिता से। और उसी उम्र में कुछ लोग अपना प्यार जताते हैं दोस्तों में, ये दिखाने के लिए कि वो कितने हैंडसम हैं, उन पर कितनी लड़कियां मरती हैं। हमारे एक दोस्त थे भाई, वो तो खुद ही अपने नाम लव लेटर लिख करके और नोटिस बोर्ड पर, जहां वो लेटर बॉक्स जहां पर मतलब लोग लड़कों की चिट्ठियां स्कूल में कॉलेज में वो चिपकाई जाती हैं कि भाई अपनी चिट्ठी ले लें, तो वहां वो अपने नाम लेटर लिख के, लव लेटर लिख के खुद ही चिपकाता था भाई, ताकि साबित कर सके कि भाई मैं भी हैंडसम हूँ, मुझ में भी लड़कियाँ मरती हैं। लेकिन जब जब मैं ये गीत बजाता हूँ बहनों भाइयों, यकीन मानिए मुझे याद आता है वो समय जब एक बार मैं स्टूडियो में जूही चावला और दिव्या भारती दोनों को इंटरव्यू कर रहा था, साथ साथ उनकी फिल्मों के बारे में बातें की, उनके अभिनय के बारे में। लेकिन साहब फिर उनकी जब जाती ज़िंदगी के बारे में सवाल पूछना शुरू किए तो एक दूसरे का मुंह देख रही थी दोनों, जूही और दिव्या भारती। वो दिव्या भारती जो बहुत छोटी उम्र में दुनिया और फिल्मी दुनिया से चल बसी। मैंने पूछा था कि भाई किसी से प्रेम हुआ, कहीं कुछ क्लिक हुआ? तो एक दूसरे का मुंह देख के कह रही, तू बोल जूही तू बोल दिव्या

कोई निशानी? किस रंग का कुर्ता पहना उसने? पगड़ी कैसी है उसकी? जो बस गया है तुम्हारे दिल में। मेले में पहचान बताई जा रही है।

0: बच के रहना रे बाबा, आज अपने प्यार पे मुझको फक्र है लेकिन मुझको फिक्र है। प्रोग्राम के तीसरे और अंतिम दौर में स्वागत है श्रोताओं का। भाई बच के रहना रे बाबा, भाई एक क्या कहते हैं, दिल में रखती है और फिर बाबा कहती है, निकाल के बाहर फेंक दिल से, हमें अगर बाबा ही कहना है तो बाबा क्यों। कार्यक्रम का ये तीसरा और अंतिम दौर। माय नेम इज रवि शर्मा, नाम विद यू टिल 1 o'clock दिस आफ्टरनून। और बहनों भाइयों, अगर आपने रेडियो अभी सुनना शुरू किया है तो भाई 2.25 घंटे का कार्यक्रम आप मिस कर चुके हैं। अब जुड़े रहिएगा हमारे साथ। पहले आपको बताते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का रेट, एक पाउंड के बदले कितने भारतीय रुपए मिल रहे हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके गिविंग 127.05 इंडियन रुपीज फॉर 1 pound। एक पाउंड के बदले 127.05 रुपए का रेट चल रहा है। यू कैन ट्रांसफर वाया ब्रांच, ऑनलाइन और बाय यूजिंग द योनो एसबीआई यूके मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज एंड सीज अप्लाई। दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क अक्रॉस लंदन, मैनचेस्टर एंड द मिडलैंड्स।
2: Us kids are mesmerized by the mundane, entranced by the everyday. Where grown-ups see a snail, we see a slippery-shelled beast from the undergrowth. But around 1 in 5 young children have a sight condition that can get in the way of all that wonder. The good news is, if these are found early, they can be managed or corrected. So book your child a free eye test at Specsavers today. Find out more at specsavers.co.uk/kidstests. Sadco.

0: सेटको फूड कंटेनर्स टोटल सेटिस्फेक्शन।
1: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena, Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
2: Location, location, location.
3: In real estate, location is everything. And this one is a villa.
2: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas.
3: Located in Dubai, in a prime location for high appreciation.
2: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
3: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
2: And the best part, townhouses and villas, Greens start from just £711,000.
3: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
2: High appreciation.
3: In Dubai.
4: Himalaya carpets की धड़कती हुई सेल. गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल. Room size laminates 30 pounds से शुरू. तमाम roll stock पर mark prices पर 20% off. Laminate flooring from 9 pounds square meter. LVT flooring from 12 pounds square meter. Rugs, beds, sofas सब पर 50% off. Carpets की तो ये सबसे बड़ी सेल है. चूकिए नहीं. Visit HimalayaCarpets.com or come at Himalaya Carpets South Hall, opposite the Ealing Hospital.
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए दुबई की शान फ्लाइट होटल साइट सींग डेजर्ट सफारी यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे तो दुबई के लिए तैयार यू डू द पैकिंग दिल डू द प्लानिंग कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410 दैट्स 85748410 साफो ट्रेवल At all protected.
6: Hey, friends के साथ weekend party हो या खुद के साथ Netflix and chill. A desi tadka is total risk, है ना?
7: Well, she is talking about Jaimin Food Potato Chips. Crunchy, tasty and total desi swad in char mazedar flavors.
6: Crunch cannot wait. So visit your nearest ethnic store and grab your Jaimin Foods potato chips now.
8: Brands that use radio are 49% more likely to get noticed. Amplify your advertising at radiocentre.org. Assuming you want to get noticed.
9: Be part of a historic grand opening.
10: Experience the newly inaugurated BAPS Swaminarayan Mandir in Paris. A once-in-a-lifetime spiritual journey.
9: Travel with your family and witness this divine occasion along with the Eiffel Tower, Seine River Cruise and a Paris City Tour.
10: Departure 5th of September. Call now on 02-03-773-633.
9: Mantra Holidays. What's your travel mantra.
11: Look, there's a snail and its eyes are sticking out of its tentacles. It looks like an ice cream.
12: Ella sees a lot more than just a snail. With free kids' glasses from Specsavers, plus a second pair from £10, they'll see a world of wonders. And you'll see a great deal too. So book them an appointment at Specsavers today, for free. £10 second pair with free glasses from our £65 and above range.
11: Conditions apply. See online for details.
13: Like a goal. Officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and LikeAGoal.com.
14: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Leica Extra. Stream it now and be a part of the conversation.
15: और बहनों भाइयों याद दिला दूं आपको कि इस सप्ताह के कलाकार का नाम है कैटा श्री जोसेफ येसुदास ऐसी सुरीली आवाज और इस उम्र में भी भाई वैसे बता दूं आपको कि हजारों गीत गाए हैं उन्होंने यस हजारों मतलब रिकॉर्ड कराए हैं डिफरेंट लैंग्वेजेस में वैसे तो वो साउथ इंडियन है लेकिन बंगाली मराठी अरेबिक तेलुगु ओडिया मलयालम तमिल सभी भाषाओं में उन्होंने गीत गाए हैं और वही वो सारे के सारे ऐसे सुरीले हैं कि भाषा आपके भले ही समझ में नहीं आती हो लेकिन गीत आप फिर भी एंजॉय करेंगे येसुदास

0: सुरीले गायक कलाकार पद्म श्री पद्म भूषण पद्म विभूषण भाई भारत सरकार ने कितने सम्मान दिए और वैसे भी फिल्मी दुनिया में संगीत क्षेत्र में कई अवार्ड्स अपने नाम करने वाले यशुदास इस सप्ताह के कलाकार हैं। यशुदास 86 बरस के हो गए, यस ही इज 86। ही वॉज बॉर्न ऑन 10th of January in 1940 और इनका जन्म स्थान कोची केरला में। लेकिन भाई भारत की कितनी ही भाषाओं में, बाहर की भाषाओं में भी इन्होंने गीत गाए हैं और हम उनकी लंबी उम्र की प्रार्थना करते हुए दुआ करते हैं कि कुछ और गीत जुड़ जाएं इनकी भाई रचनाओं में, इनके गीतों में। तो साहब और भी बहुत सारे गीत आप सुनेंगे क्योंकि वो इस सप्ताह खूब गूंजेंगे लाइका गोल्ड रेडियो पर।
1: Brought to you by Derry Valley.
2: Soft and tender, like grandma's warm hug. Derry Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: दिल में है तू, जिगर में तू, फेफड़ों में तू, किडनी में भी तू।
1: Feel good track brought to you by Dairy Valley.
2: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, motichur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
0: और बहनों भाइयों, गीत संगीत सुनवाते हुए कुछ एक संदेश भी हमारे सामने आ जाते हैं जो आपके साथ हमने साझा करने हैं। एक तो ये कि भाई हम लोग कई बड़े बड़े कार्यक्रमों के मीडिया पार्टनर्स हैं। आपको बता दें कि जो दिवाली स्टोरी कार्यक्रम हो रहा है, लाइका रेडियो नेटवर्क इज़ द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ दैट स्टेज म्यूजिकल दिवाली स्टोरी। भूलिएगा नहीं, 27 सितंबर को वेम्बली अरीना में, ओवो वेम्बली अरीना में इसका प्रदर्शन है। और भाई हम लाइका रेडियो इज द एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर ऑफ लेस्टर मेला अगेन ऑन 15th and 16th of August एट एबे पार्क, ऑल्सो द ब्रेडफोर्ड सिटी मेला ऑन 1st and 2nd of August एट सिटी पार्क। तो भाई जहाँ जहाँ भी पहुँच सके पहुँचिए और हमारे साथियों से मुलाकात कीजिए। हमारे कार्यक्रम जो है आउट एंड अबाउट चलते रहते हैं और बाहर मिलकर के आपसे बहुत अच्छा लगता है।
2: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM।
3: This superhit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. With a range of grains and flavors from around the world, you can make every meal memorable.

0: वन ऑफ द सुपरहिट सॉन्ग्स बाय किशोर कुमार, यादगार गीत।
1: आंसू भी न हो बस प्यार ही प्यार,
0: प्यार ही प्यार पले एक ऐसे गगन के तले,
1: गगन के तले।
2: Holiday breaks are brought to you by Southall Travel.
0: साउथ ऑल ट्रेवल का ऐलान याद दिला दें आपको, कह रहे हैं कि भाई FCDU हैज लिफ्टेड इट्स एडवाइस अगेंस्ट ऑल बट एसेंशियल ट्रेवल टू दुबई। कॉल साउथ ऑल ट्रेवल फॉर द मोस्ट कंपेटिटिव दुबई डील्स ऑन 0208-574-8410 एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Holiday breaks were brought to you by Southall Travel. Low prices for flights, hotels or holiday packages. Visit southalltravel.co.uk. Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive.
3: लाइका गो
0: ट्रेवल हब world.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन ट्रेवल हब world.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 ऑन 0208-782-8833 और विजिट ट्रेवल हब world.com।
4: ट्रेवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
0: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
4: विजिट ट्रेवल world.com.
5: Mom, I don't know what to do anymore. My hair is getting worse. I've tried everything. Nothing works.
6: Beta, you're not alone. For 5 generations, our family trusted one thing. Pure herbal care. Amla, Bringraj, Neem. Real ingredients, not chemicals.
5: So where do we find something like that now?
6: Right here in London. Baidyanath Sidhayu Hair Oil Shampoo and Toothpaste. Pure Ayurvedic, premium and made the way our eldest used it.
7: From the house of Baidyanath, with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
8: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
9: चावल हो बेस्ट सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना, दिशा बासमती राइस।
10: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड, अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
11: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
12: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
11: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
12: And you didn't pay those massive roaming charges?
11: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
13: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
0: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 0793027 1।
14: Location.
15: In real estate, location is everything, and this one is a winner.
14: Introducing Greens by Daniel, a premium collection of townhouses and villas
15: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
14: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
15: Step outside and enjoy 50 plus amenities inside the master community.
14: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
15: To book, call our London office on 020-3963-5757. Greens by Danube. Prime location,
14: high appreciation
15: in Dubai.
16: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply।
17: साउथ हॉल देसी स्वाद का असली अड्डा आ गया है
18: बीकानेर वाला परंपरा भी।
19: बीकानेर वाला में मिलेंगे फेमस छोले भटूरे, टेस्टी स्नैक्स, मिठाई और फैमिली के साथ यादगार मोमेंट्स। आइए 60 किंग स्ट्रीट साउथ हॉल UB2 4DB। कॉल 07795181001।
2: Like a Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan.
20: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है। लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं। ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा। संपर्क करें 02071321458 या ईमेल sales@laikaradio.com। टेस्टी ट्रैक ऑफ द आवर ब्रॉट टू यू बाय कोका नूडल्स।

0: खिलता है, सबका खिलता है, सबको मिलता है, सबके साथ होता है। अनुराधा पोडवाल और सुरेश वाडकर, दो सुरीली आवाजें। संगीत था फिल्म का नाम, 1992 की फिल्म थी। बड़े सुरीले गीत है इस फिल्म में भाई, दूसरे गीत भी कभी आएगी बारी उनकी, सुनवाए जाएंगे।
1: Tasty track of the hour, sponsored by Coca Noodles. Just add hot water and enjoy Coca Noodles in 3 minutes.
2: Manoranjan with Ravi Sharma.
3: Like a gold.
4: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: और रेट्स में बता देता हूँ भाई, LemFi वाले जो इस समय 1 pound के बदले दे रहे हैं इंडियन करेंसी में, भारतीय मुद्रा में 127.27 रुपीस, पाकिस्तानी करेंसी में 368.91, श्रीलंकन रुपए 446.27, बांग्लादेशी टके 163.95 और अफगान अफगानी 88.25।
4: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: And the gold is trading at the rate of 97.6 pounds per gram.
4: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.

0: Mabster no pani puri ane pani puri no pani.
1: All Mabster products are nut free and made in Canada. Now available at your nearest Asian grocery store.
2: Up next, Ballybrumbat with Gold Afternoons on Leica Gold.
3: Manoranjan with Ravi Sharma.
4: और डीजे साहब, अब धीरे धीरे हम अब कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं और खबरें आप पहले सुनेंगे, उसके बाद बाली ब्रह्म भट्ट आपके मेजबान होंगे। हम अब ताज़ा खबरों में आपको बता दें कि भारत में पार्लियामेंट में आज जो बिल पेश किया गया उसमें 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना, पेपर लीक रोकने वाले नए प्रस्तावित कानून में ये बातें शामिल की गई हैं। पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, वहाँ पीओके में जो इलेक्शन चल रहे उसके दौरान भाई सिक्योरिटी फोर्सेज और लोगों के बीच टकराव में कई लोग मारे गए हैं और बहुत सारे जख्मी भी हुए हैं। खबरों का इंतज़ार कीजिए और रवि शर्मा को अब इजाज़त दीजिए। हमारी आपकी मुलाकात कल होगी एक और मनोरंजन प्रोग्राम लेकर। मैं आपकी सेवा में हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन अब जाऊंगा।
5: ना घर है ना ठिकाना,
4: नहीं ऐसा तो नहीं है भाई, घर भी है ठिकाना भी है, लेकिन कल आने के लिए हमें आज जाना भी है। Have a superb day. Bye-bye.

0: गोल्ड आफ्टरनून टू यू. मैं हूं बाली ब्रह्मभट्ट आपकी खिदमत में ऑन लाइका गोल्ड विद गोल्ड आफ्टरनून्स स्पॉन्सर्ड बाय जैमिन फूड्स अवेलेबल ऑन 1035 मीडियम वेव डीएबी एलेक्सा गूगल होम एंड लाइका गोल्ड .com आल्सो अवेलेबल ऑन रेडियो प्लेयर ऐप एंड अ बिग बिग गोल्ड आफ्टरनून टू एवरीवन ऑन रेडियो मिडलैंड्स 385th डे ऑफ लाइका रेडियो मिडलैंड्स. आज हम याद कर रहे हैं वन ऑफ माय फेवरेट्स. यस, उनका नाम ज़ेबुनिसा खान. ज़ेबुनिसा खान जिसको हम प्यार से कुमकुम के नाम से जानते हैं. बचपन से ही जब मैं सिनेमा में जाता था मेरे पेरेंट्स के साथ, तब से आई यूज टू एडमायर दिस वंडरफुल फेस विद huge big eyes and a beautiful smile and very versatile in her acting and dancing. Amazing hard working actress. You know, inka naam Kumkum aur inka janam hua 8th of June 1938, and she passed away at a beautiful age of 82. 28th July 2020, that is 6 years ago. So we are remembering her on her 6th death anniversary. जैसे मैंने कहा, ज़ेबुनिसा इनका नाम, and she was the daughter of a nawab. जहाँ पे ये जन्मी थी, हुसैनाबाद of शेखुपुरा in बिहार, वहाँ के वो नवाब उनके पिताजी थे. अब हुआ क्या कि कुमकुम को वैसे तो फिल्मों के बारे में काफ़ी जानकारी थी, लेकिन ऐसा सोचा तो नहीं था कि मैं जाके एक्ट्रेस बनूंगी. लेकिन इनको डिस्कवर किया किसने? गुरुदत्त जी ने. गुरुदत्त जी को एक गाना शूट करना था. ये गाना शूट करना था इनको, यू नो, जगदीप, हमारे जगदीप जी, हाँ, द कॉमेडियन, उनके ऊपर ये एक गाना पिक्चराइज करना था, कभी आर कभी पार. लेकिन उन्होंने माइंड चेंज कर लिया और सोचा कि ये गाना एक फीमेल के ऊपर होना चाहिए, विच वॉज राइटली सो. आई थिंक व्हेन यू हियर द सॉन्ग यू डू रियलाइज दैट इट वॉज द राइट डिसीजन. तो इन्होंने जब डिसाइड किया कि ये गाना मैं एक फीमेल पे पिक्चराइज करूंगा, तो उन्होंने खोजना शुरू कर दिया. एंड ही स्टार्टेड आस्किंग ऑल द फेमस एक्ट्रेसेस ऑफ दोज टाइम्स, एंड नन ऑफ देम वांटेड टू डू अ स्मॉल रोल. ये छोटा सा रोल था फिल्म में, तो नेचुरली दे डिड नॉट वांट अ स्मॉल रोल. जहाँ पे कुमकुम ने हाँ कह दी, और जब कुमकुम ने हाँ कही तो कभी आर कभी पार गाने का शूटिंग उन पे हुआ. एंड उसके बाद गुरुदत्त के साथ काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई. तो CID फिल्म, प्यासा, मिस्टर एंड मिसेस 55, उन सब में इनको गाने भी मिले, जो गाने उन पे पिक्चराइज होते थे, और एक्टिंग का रोल भी मिलने लगा. एंड देन शी स्टार्टेड डूइंग हीरोइन रोल्स एज वेल. अब देखा जाए तो 1956 में इन्होंने एक साइड रोल किया था. हीरो कौन थे? शम्मी कपूर. अब शम्मी कपूर के सामने अगर एक्टिंग करनी हो तो लीड रोल ऐसे ही नहीं मिल जाता. 1956 का साल था, और 1956 में आई थिंक शी वॉज 18 ईयर्स ओल्ड, एंड शी गॉट अ साइड रोल विद शम्मी कपूर. और 3 साल के बाद कुमकुम ने ऐसा बड़ा नाम कमा लिया था उस उन 3 सालों में, कि 1956 में साइड रोल और 1959 में मेन रोल विद द फिल्म चार दिल चार राहें. दैट वाज द मेन रोल. और साइड रोल जो था वो फिल्म मेम साहब का था. अभी सोचो क्या लक कि धर्मेंद्र, व्हेन ही डिड हिज डेब्यू फिल्म, धर्मेंद्रस फर्स्ट हीरोइन वाज कुमकुम. तेरे हम भी दिल भी तेरा हम भी तेरे, 1960 की फिल्म जो थी, दैट वाज द डेब्यू फिल्म ऑफ धर्मेंद्र. एंड उनको लीड रोल, फर्स्ट हीरोइन ऑफ धर्मेंद्र वाज कुमकुम. एंड देन शी वॉज सो हार्ड वर्किंग शी थॉट मैं डांसिंग करना जानती तो मुझे और भी अच्छे रोल्स मिलेंगे, क्योंकि वैसे तो डांसिंग वो करती ही थी विदाउट ट्रेनिंग, लेकिन पंडित शंभू महाराज इन्होंने उनको ट्रेन किया कथक डांसिंग में। और कोहिनूर फिल्म में जो दो गाने हुए थे, मधुबन में राधिका नाचेरे एंड हाय जादूगर का दिल, ओ माय गॉड, आज भी लोग वो डांसिंग देखते हैं और खुश हो जाते हैं। किशोर कुमार जी के साथ इन्होंने बहुत अच्छा रिश्ता निभाया, गंगा की लहरें वॉज वन ऑफ द फिल्म्स, एंड इनके गाने हम सुनते जाएंगे और बातें भी करते जाएंगे। अभी आपने एक गाना देखा, कौन सा था, खूबसूरत हसीना, उस पे कुमार सानू का एक गाना है, ए मेरे हम सफर, है ना वही गाना। हाँ, वो वन ऑफ द लेटेस्ट गाने ऑफ कुमार सानू, एंड उसके अंदर जो गिटार का पीस है उस गाने का, ए मेरे हम सफर टनंग टिंग टैं टैं डैं, वो पीस कौन सा है, आ जा रे आ जरा टनंग टिंग टैं टैं डैं, वही गिटार का पीस इसी गाने में डाला है, क्या मिश्रण हुआ नहीं। एनीवे, वेल लेट्स कम बैक टू कुमकुम एंड एंजॉय टॉकिंग अबाउट हर, एंजॉय हर लाइफ, एंड नॉट ओनली दैट, शी वॉज एक्टिंग फॉर 19 ईयर्स, और 19 ईयर्स में 101 फिल्म, और इन्होंने भोजपुरी की सबसे पहली फिल्म जो थी वो इन्होंने की थी, गंगा मैया तोहे प्यारी चढ़ाई बो, हाँ, तो वो पहली फिल्म थी। उसके बाद काफ़ी की थी, नाज एक्ट्रेस और कुमकुम, इन दोनों ने पकड़ के रखा था भोजपुरी इंडस्ट्री। एंड आगे जाते हुए हम और भी गाने सुनेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। कुमकुम फॉर 2 आवर्स, यू गोना एंजॉय ऑल द वंडरफुल सॉन्ग्स ऑफ कुमकुम।
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: Right, your £1 in British sterling can get you up to 127.05. 127.05 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: Gold Afternoons with Bali Brambert. Bali Brambert is proudly sponsored by Jaimin Foods, your trusted name for dal bhat, pav bhaji, biryani and so much more. Available now at your nearest Asian shops. Jaimin Foods, the authentic taste of India.
3: When your daughter's wedding guest list is double-sided, enjoy every hand-clapping second of it. Be a step ahead with Barclays Premier, with our best savings rates. Barclays, backing your future. Eligibility criteria apply, T's and C's apply.

0: Book now, visit starters.co.uk or call 208-900-2323.
1: हिमालय कारपेट्स की धड़कती हुई सेल, गर्मी से कीमतें पिघलती हुई सेल, रूम साइज रेमिनेंट्स 30 pounds से शुरू, तमाम रोल स्टॉक पर मार्क प्राइसेस पर 20% ऑफ, लेमिनेट फ्लोरिंग फ्रॉम 9 pounds स्क्वायर मीटर, एलवीटी फ्लोरिंग फ्रॉम 12 pounds स्क्वायर मीटर, रग्स बेड्स सोफास सब पर 50% ऑफ। कारपेट्स की तो ये सबसे बड़ी सेल है, चूकिए नहीं, विजिट himalayacarpets.com और कम एट हिमालय कारपेट साउथ हॉल अपोजिट द ईलिंग हॉस्पिटल।
2: You know how UK weather can do full drama with our hair. One day frizz, one day flat. That's why I switched to Siddhayu Hair Oil. It's proper premium light, non-sticky and made with real Ayurvedic herbs. Mum loves it because it's traditional. I love it because it actually works. Stronger roots, less hair foil and that healthy shine you notice straight away. From the house of Baidyanath with over 100 years of Ayurvedic legacy. Available at all quality food stores and other leading retail stores across the UK.
3: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
4: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
3: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
4: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
3: Cashback Remortgages, your mortgage should work for you.
5: What food mein dinner plans?
6: Thoda classy, thoda desi.
7: To aaiye Godfather & Co. Vivek House Bar & Kitchen.
5: From crispy starters, butter chicken, paneer tikka masala se biryani tak, fresh bread and refreshing drinks. Har bite mein lajawab flavors aur vibe bilkul premium.
7: Friends, family ya special night out, ise yaadgar banaiye. Visit Vivek House Watford. Call 01923227 1274. Book your table today.
8: यार कभी कभी अपने देश के छोले भटूरे, राज कचोरी और मिठाइयों की बहुत याद आती है,
9: तो फिर इंतजार क्यों? हॉन्स्लो एंड साउथ हॉल के बाद अब बीकानेर वाला आ गया है गैंसिल इलफोर्ड में।
8: सच?
9: बिल्कुल, देश का असली स्वाद, लाजवाब मिठाइयाँ और अपनेपन की खुशबू सब एक ही जगह।
10: आज ही विजिट करें बीकानेर वाला 513-519 क्रैनबुक रोड, गैंसिल इलफोर्ड, IG2 6HA। कॉल करे 07555-506-015। बीकानेर वाला, टेस्ट ऑफ इंडिया नाउ इन इलफर्ड।
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 02081502025 और विजिट meraboiler.com। T&Cs अप्लाई।
12: Discover Turkey with a beach and touring escape. Fly from the UK, enjoy 7 nights all-inclusive beach stay, then experience a 3-day escorted tour in Cappadocia. Prices lead in from just £1,199 per person. For Turkey holidays with a difference, visit Skylord Cruise and holidays.com or call 019-238-83100. Atoll protected.
13: मीनार ज्वेलर्स, अगर आप सोना बेचना चाहते हैं या वैल्यूएशन करवाना चाहते हैं तो उसकी सही टीम अप के लिए तशरीफ ले जाइए मीनार ज्वेलर्स पर 181 अपर टूटिंग रोड या विजिट कीजिए meenarjewelers.com। कॉल 02087677627।
14: लाइक अ कूल, लंदन का नंबर वन एशियन रेट्रो म्यूजिक स्टेशन अब अवेलेबल है ग्रेटर लंदन में 10:35 AM पर DAB डिजिटल रेडियो पर। एलेक्सा पे बोलो प्ले लाइक अ कूल और ऑनलाइन सुनो likeagold.com पे। Feel good track brought to you by Dairy Valley.
15: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: वाह, क्या गाना आज की तारीख में जहां भी जाओ ये गाना हमेशा सुनाई देता है। दिस इज सुल्ताना एंड लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और आनंद बख्शी की लिरिक्स। अब इसके इस गाने के बारे में अगर मैं बात करूं तो एक पर्दा खुलता है, ऑडियंस पूरी थिएटर के अंदर बैठी है और पर्दा खुलता है और एक सिलुएट फिगर आती है एंड शी स्टार्ट स्वेइंग हर हिप्स एंड एवरीथिंग और उसके बाद लाइट्स ऑन होती है एंड दैट्स कुमकुम एंड शी इज डांसिंग एंड सडनली एंट्री लाइक हवा का झोंका कम्स इन किशोर कुमार and how is he dressed? He is dressed in a Pathani uniform, a Pathani clothing, and he's got one of those, you know, Morocco jaoge to aap lal rang ki wo topi nazar aati hai, it's a red hat with a black tassel on it, hai na, usko bolte hai fez, wo actually it's known as fez. Why? Because it originated from a place, a Moroccan city called Fez, F-E-Z. Lekin Arabic mein, it was kafi spread ho gaya tha pura Turkoman empire mein. And it was called Tarbush. Uska dusra naam hai. Lekin Fez naam, local jo jahan pe Morocco ki city jo thi, wahan se originate hui. तो उनको उसको फैज बोलते हैं और वहाँ पे लोकल बेरीज लाल रंग की बेरीज जो थी वर ओरिजिनली यूज्ड टू मेक द डिस्टिंक्टिव रेड डाई, लाल रंग की वो जो डाई उसी से उसका कलर है लाल रंग का। एंड जैसे मैंने कहा कि अरेबिक रीजन में तो इट्स नोन एज तरबूश और जब भी कोई फॉर्मल ओकेजन होता है एंड नेशनल हॉलीडेज होती है तब ये ट्रेडिशनल रॉयल अटायर इन मोरक्को यूज किया जाता है। तो किशोर कुमार एंटर्स विद दैट लाल टोपी एंड द वे ही सिंग्स एंड बोथ ऑफ देम डू सुल्ताना सुल्ताना तू ना घबराना, ब्यूटिफुल सॉन्ग एंड वर्थ वॉचिंग ऑन द बिग स्क्रीन एज वेल। किशोर कुमार के साथ, किशोर कुमार जी के साथ काफ़ी अच्छा रिश्ता रहा कुमकुम जी का एंड दे रियली डिड, दे वर अ मैजिकल पेयर एंड दे डिड मैनी फिल्म्स टुगेदर लाइक आई सेड, गंगा की लहरें, श्रीमान फंतूश, ऐसी ऐसी फिल्में। अब कुमकुम के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने 110 फिल्में की, 110 फिल्म्स प्लस अबाउट ए डजन भोजपुरी फिल्म्स जो इन्होंने की थी। इन 1972, नाउ व्हेन शी वाज बोर्न इन 1938, सो 48, 58, 68, दैट्स 34 years of age, 34 साल की उम्र में शी मैरिड सैयद सज्जाद अकबर खान। सैयद सज्जाद वॉज एक्चुअली फ्रॉम लखनऊ बट ही वॉज वर्किंग इन सऊदी अरेबिया। अब इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दी और छोड़कर वो चली गई सऊदी अरेबिया टू सेटल एंड देन आफ्टर 23 ईयर्स, आई थिंक 1995 में शी केम बैक आफ्टर 23 ईयर्स बैक टू मुंबई एंड दे हैड अ डॉटर सईदा अंदलीब सज्जाद खान एंड आई थॉट आई शुड शेयर हर वंडरफुल लाइफ हिस्ट्री ऑफ कुमकुम जी बिकॉज वी आर रिमेम्बरिंग हर रियल नेम ज़ैबुनिसा खान एंड शी इट्स हर सिक्स्थ डेथ एनिवर्सरी एंड वेरी फॉन्डली डू आई ऑलवेज रिमेम्बर हर, चाहे उनकी बर्थ एनिवर्सरी हो या डेथ एनिवर्सरी हो, बिकॉज शी हैड सम वंडरफुल टैलेंट एक्टिंग वाइज एंड डांसिंग वाइज एंड ऑल द सॉन्ग्स दैट यू आर लिसनिंग टू आर सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स, सो व्हाई नॉट है। आई होप यू आर एंजॉइंग द ट्रिब्यूट ऑफ ज़ैबुनिसा खान, दैट इज कुमकुम।
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
0: And looking at all the currencies, each currency equivalent to one sterling pound. US dollars 1.3292, Indian rupees 127.31, Pakistani rupees 369.17, Afghan Afghanis 88.27, Kenyan shillings 172.1, and for one sterling pound, Mauritian rupees 63.11.
2: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
3: Leica Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
0: Gold is currently trading at £97.66 per gram.
1: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
4: Hey, this is Sandy Shah. Drive you home every Monday to Friday between 4 and 7 p.m. with the best tunes, mind games, and a bit of Ye Yavo. Only Leica Gold.
5: Gold Afternoons.
6: Gold Afternoons.
5: Proudly sponsored by Jaimin Foods. The authentic taste of India. Dal bhat, pav bhaji, biryani. Bas pet sambhar jo, kyunki cravings badhne wali hai.
7: Dad, Dad, Dad!
8: What's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to Daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale, bale. I'm going to tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
7: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
9: Weddings, celebrations, corporate events, ragas and sabkuch. एफिशिएंटली हैंडल करते हैं परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए फॉरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasun.com लोकेशन डिजाइन मैनेजमेंट या केटरिंग रागासन
10: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
11: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश हिंदी गुजराती मराठी तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344 Our line.
12: Search is changing.
13: Customers aren't just using Google anymore.
12: They're asking AI.
13: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
12: One business, one recommendation.
13: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
12: Will your business be the answer?
13: Or the one that got left behind?
12: The future of search has already started.
13: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
12: Harty Hanks, the digital agency.

0: Wow. I mean, when you listen to these kind of classical songs, Ja Ja Re Ja Balamwa, yahan pe you see the actual talent of Kumkum Ji, the way she showed her classical dancing talent. And she was trained in Kathak by Pandit Shambhu Maharaj. और इन्होंने जितने भी गाने क्लासिकल में डांस किए हैं आज तक भी इतने मशहूर है. लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि शंकर जयकिशन ने राग पीलू, मियाँ की मल्हार, तोड़ी, झिनझिनो, कौन सी थी एक बसंत बहार, जी हाँ, और भैरवी, और ये सब राग को इस्तेमाल करके इन्होंने इस फिल्म का म्यूज़िक दिया. And the film was Basant Bahar with Bharat Bhushan and Nimmi. And it was a beautiful story, 1959 ki, and Kumkum was only 21 years old. Suniyega aage.
1: Tune in to Leica Gold, London's number one Asian retro station on the Leica Radio mobile app.
0: Mera naam hai Chameli. Film hai Raja aur Rank.

0: वाओ वाओ, और एंड में जो बिजली का चमकारा होता है. वी आर एक्चुअली लिसनिंग टू द सॉन्ग्स दैट वर पिक्चराइज्ड ऑन कुमकुम. कुमकुम ज़ेबुनिसा खान एंड इट्स हर सिक्स्थ डेथ एनिवर्सरी. लाइक फर्स्ट आवर में मैंने उनके बारे में सब कुछ बताया आपको, और अब हम उनके गाने सुन रहे हैं जो पिक्चराइज हुए उन पर. पहला गाना था फिल्म बसंत पहार का, 1956 की जो फिल्म थी. लता मंगेशकर और आशा भोसले दोनों बहनों ने गाया था उसके अंदर. एंड इट वाज कर गया रे मुझ पे, एंड दैट वाज भारत भूषण एक मुजरा में बैठे हैं और कुमकुम डांस कर रही है, और सैडली साथ में निम्मी कहीं पे बैठ के सितार बजा रही है और वो भी गा रही है. सो इट्स लाइक हैप्पी सैड मोमेंट्स दे शो. And Kumkum really shows her prowess as a dancer, the classical knowledge she had in Kathak. And she was trained by Pandit Shambhu Maharaj. And Shambhu Maharaj ji ne jo training unko di, wo nazar aati hai. And dusre gaane ke andar bhi, itna grandeur se ek itna beautiful film ka set banaya hai. उसके अंदर सब जगह मूर्तियां हैं और एक बड़ा स्टेज है जहां से एक स्लोप है, और स्लोप के ऊपर से सब लड़कियां आती है. वेरी कलरफुल, दे आर ड्रेस्ड इन पिंक एंड ब्लू, एंड कुमकुम कम्स राइट इन द मिडल एंड स्टार्ट्स डांसिंग. फिल्म है सन ऑफ इंडिया 1962 की. वो पहला गाना था, वो शंकर जयकिशन का संगीत था, और ये दिया ना भुजेरी. बहुत अच्छा संगीत दिया नौशाद जी ने, और उसके अंदर लिरिक्स जो थी शकील बादायूनी जी की. सन ऑफ इंडिया 1962, एंड वी आर गोना लिसन टू अ सॉन्ग फ्रॉम फिल्म कोहिनूर. सबसे मशहूर गाना जिनके लिए उनको बड़ा सराहा गया कुमकुम जी को, वो आप सुनिएगा नेक्स्ट. मैं हूँ बाली ब्रह्मभट्ट ऑन लाइक अ गोल्ड विद Gold Afternoons, sponsored by Jaimin Foods, available on 1035 medium wave, DAV, Alexa, Google Home, and LaikaGold.com, and also available on Radio Player app. And a big Gold Afternoon to Radio Midlands pe sunne walon ko. That's right, all over Midlands, right from Leicester kaho ya Birmingham kaho, all the wonderful towns around in the Midlands. 385th day of Laika Radio Midlands today. And aage sunte jaiyega aur maza lijiyega. I hope you're enjoying the tribute. And thanks to the exciting messages from Sandhya Bhauser, Bharat Gangaram ji, jinhone Laika ki topi pehen ke ek photo bheja hai by the riverside. Ab pata nahi jagah kahan hai, but I'm really enjoying it. And there is Aruna and Bhupendra Patel, Vijay Godori, who's been going like nearly 8 kilometers of walk with his golf game. Ah, wonderful, wonderful to know all these wonderful people and messaging me on 07424-232323 WhatsApp. And Dinesh Poparji enjoying the songs of Kumkum, Prakash Somayaji, and Mithul Patel, and Meena Lakhani. Aaj to Meena Lakhani bhi aa gayi. Aur Jaydev Soni, all the way from Leicester, Dugu Yangu. And then we got it's a beautiful message from Kenya. And they said, sorry, who are we remembering today? मतलब एक बजे आपने चेक इन नहीं किया था, इसलिए आप मुझे पूछ रहे हैं. तो दिस इज़ कुमकुम, ओके कीर्ति भैया. और फर्स्ट आवर से ही ये ट्रिब्यूट शुरू हो गया था, सो यू मिस्ड आउट वन आवर ऑफ वंडरफुल सॉन्ग्स ऑफ कुमकुम जी. बट कंटिन्यू एंड जॉइन इन. थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. रमा पटेल जी, थैंक यू वेरी मच. एंड शी इज सेइंग लाइक अ व्हाट्सएप नॉट वर्किंग. If anybody can tell me if Laika WhatsApp is working or not, then we can know if it's her phone or is it her network or is it really a problem. Please do let me know. And I think we got a beautiful message from Vinod, and saying enjoying tribute of Kumkum. एंड आई लिसन टू वाह ब्यूटिफुल रंजीत रजवाड़ा. आई रिमेम्बर माई ग्रैंड मा शी टोल्ड अस वी हैड रजवाड़ा इन इंडिया इन राजस्थान. So there you go, beautiful songs. And Ranjit Rajwara is really looking forward to the audience filling up Harrow Arts Center on 29th. That's tomorrow. And I'm going to be there. Yes, it's going to be Ranjit Rajwara at the Harrow Arts Center. And the tickets are going so fast. And Dinesh Popatji, congratulations. You won 2 tickets for that show. And I'll be seeing you there as well. And Jagdish Bhaiya, I'll be seeing you there as well. And we got Bharti. Thank you very much for your message. Hansa Vora, Mickey, Nirmala. Thank you. Thank you. Good afternoon, Nirmala ji. And Jasmine, always chulbuli. Jasmine, always smiling and walks in with a beautiful smile saying happy Tuesday. Narendra Panchal ji, a beautiful musician listening to us, and many silent listeners as well. Manu, Seher, Sunita Sharma ji, as always, thank you for your entry. And there is Hannah and Farida Ghulam Ali ji. Farida ji, we are praying, you know, for Shami, and I hope she gets well soon. So we are actually carrying on with the wonderful music of the films of Kum Kum Ji. Sunte jaiyega aur enjoy karte jaiyega.
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: And here we are with the SBI rates. £1 in British sterling can get you up to 127.05 Indian rupees. Don't forget to exchange in branch, online or SBI Yono mobile app. TNCs apply.
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch. T's and C's apply.
2: You're listening to Bali Brahmbhat in Gold Afternoons. Gold Afternoons. Proudly sponsored by Gemin Foods. Quality, taste and tradition in every pack. Find your favorites at Asian shops near you.
3: Packed for the trip? Gifts? Passport?
4: Check. Just dreading that phone bill when I get back from India. Roaming is a nightmare.
5: Mate, you're doing it wrong. Just get Simzy.
4: Simzy?
5: It's an eSIM app. You buy a data plan for India starting at just $5. No swapping plastic SIMs. No kiosks.
6: Plans for Asia, Europe and beyond. Search Simzy.com. That's SIMZY.com. T's and C's apply.
7: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड. बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.

0: सबसे निराला मैम्स्टर पानी पूरी और पानी पूरी का पानी.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: एक ऐतिहासिक अने दिव्य अवसर पेरिस मा भव्य बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर ना ग्रैंड ओपनिंग मा दर्शन नो लाभ. आ पवित्र यात्रा मा जोड़ाओ आपना परिवार साथे जहां मळशे शांति भक्ति अने आनंद अने साथे आईफिल टावर सेन रिवर क्रूज अने पेरिस सिटी टूर नो आनंद माणो. डिपार्चर 5 सितंबर ना मंत्रा हॉलिडेज. कॉल करो 0203-773-6333. मंत्रा हॉलिडेज, व्हाट्स योर ट्रैवल मंत्रा.
3: अपने बिजनेस को यूके के लार्जेस्ट एशियन कमर्शियल रेडियो नेटवर्क पर एडवर्टाइज करने के लिए कॉल करें लाइक आर रेडियो सेल्स ऑन 0207-132-1458 या ईमेल करें sales@laikamedia.co.uk.
4: Across London, this is Bally Brambat on Laika Gold.

0: film CID 1956. And these two singers were different from the usual ones that we listen to. Rafi sahab gaate hain, jisme yahan pe Sudha Malhotra ki awaaz hai is gaane ke andar. अब ओपी नैयर का संगीत और मजरूह सुल्तानपुरी की लिरिक्स एंड आगे जो गाना है गंगा की लहरें का और छेड़ो ना मेरी जुल्फें ब्यूटिफुली पिक्चराइज्ड एंड चित्रगुप्त ने क्या संगीत दिया और मजरूह सुल्तानपुरी अगेन गिविंग द म्यूजिक फॉर दिस पर्टिकुलर फिल्म. वी हैव बीन लिसनिंग टू ऑल द सॉन्ग्स ऑफ कुमकुम जी whose असली नेम मतलब जिनका असली नाम ज़ेबुनिसा खान, born on 8th of June 1938 in शेखुपुरा and that was in बिहार, that's हुसैनाबाद. इनके पिताजी एक नवाब थे उस इलाके के and she passed away at the age of 82 on 28th of July 2020 in Mumbai. So I hope you enjoyed the tribute for the 2 hours. Wonderful songs. She was so lucky to get all these wonderful songs. And next gana, suniyega.
1: This is Like a Gold across Greater London.

0: now visit starters.co.uk or call 0208-900-2323.
1: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
2: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को. स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफोर्ड. तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 0730099823.
3: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
4: Chawal ho best, sab kare test. Disha rice ka hai zamana. Disha basmati rice.
5: Disha rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carry's, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sira South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha rice, come down and taste the difference.
6: After a sold-out show at the Royal Albert Hall, Diwali Story, The Journey of Ram, a musical, now comes to OVO Arena Wembley. Witness this spectacular live musical on Sunday, the 27th of September. A powerful stage retelling of the Ramayana. Original music, breathtaking dance, grand visuals and storytelling for every generation. Book now on DiwaliStory.com.
7: खाखरा क्रंच, भाकरी मंच, चिक्की स्वीट, पापड़ बीट, पिकल्स हीट, ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक.
8: एड देसी तड़का टू योर रूटीन विद जयमिन फूड के वैरायटी ऑफ स्नैक्स, खाखरा, नमकीन, पापड़, पिकल्स, चिक्की, पॉट मील्स एंड मच मोर.
7: जयमिन फूड्स, देसी क्रेविंग्स, अवेलेबल एट नियरेस्ट एथनिक ग्रोसरी स्टोर्स.
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका. अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत. 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड. और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी. तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply. Minar Jewelers, Best Independent Retailer 2026. Come and find out why. Best jewelry for the bride and groom. Phone 0208-767-7547.
10: This super hit track is brought to you by Tilda Basmati Rice. Take your taste buds to the next level with Tilda.

0: Mamster Golgappe at the Golgappe and the Pani.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: Okay, bags are here. Where's the taxi? I can't load the map.
3: Relax, I've booked the Uber already.
2: How? My roaming isn't even working yet.
3: I switched to Simzy before we left London.
2: Simzy? Since when are you the tech expert?
3: Since I decided I want a stress-free holiday.
4: Don't let roaming ruin your holiday spirit. Get the Simzy eSIM for affordable data in India and across the globe. Simzy, holiday travel simplified.
5: T's and C's apply.
6: 07300998823. नोट किया? किटी पार्टी, बिजनेस मीटिंग, कॉर्पोरेट इवेंट, फैमिली ओकेजन, बस व्हाट्सएप करें गॉडफादर एंड को बार एंड किचन को. सर्विस एक्सेलेंट, फूड अमेजिंग और एक्सपीरियंस ऐसा कि आप खुद भी आएंगे और दूसरों को भी रेकमेंड करेंगे. विवेक हाउस वॉटफर्ड, बुक ऑन व्हाट्सएप 07300998823.
7: भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए.
8: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
7: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी.
8: गारंटेड.
7: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे. साउथ हॉल ट्रेवल,
8: फोन 02085748410.
7: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410. एट ऑल प्रोटेक्टेड.
9: कॉन्सलो, अब इंडिया का फेवरेट स्वाद बिल्कुल आपके पास.
10: बीकानेर वाला परंपरा भी स्वाद भी.
11: बीकानेर वाला में एंजॉय कीजिए फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ. आज ही आइए 101-105 हाई स्ट्रीट हाउसलो, TW3 1QT. कॉल करें 07487-687-885.
12: Hello London, the wait is over. Kalyan Jewelers invites you to the grand opening of our spectacular new showroom. Join us on Green Street, Upton Park this July 31st. Kalyan Jewelers, also at Belgrave Road, Leicester.
13: This is Sandy Shah on Gold Drive.
14: Tasty track of the hour brought to you by Coca Noodles.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: झूठ बोला सैंडी शाह ने झूठ बोला
0: ऑन गोल्ड ड्राइव.
3: थैंक यू टू एवरीवन हु टुक पार्ट सो फार इन झूठ बोला एंड सम इंटरेस्टिंग आंसर्स कमिंग थ्रू व्हिच इज ऑलवेज गुड. इट्स ऑलवेज नाइस टू नो व्हाट यू आर थिंकिंग. सो लेट्स डू दिस नाउ. फर्स्ट द टू स्टेटमेंट्स आई हैव मेड, वन ऑफ व्हिच इज अ कंप्लीट लाई. फर्स्ट वन इज दैट द नेशनल एनिमल ऑफ स्कॉटलैंड इज अ यूनिकॉर्न. Secondly, Iceland has no native fox. There are no foxes in Iceland. One of these statements is a complete lie. You just need to tell me which one you think I'm lying about. Is it the fact that the national animal of Scotland is a unicorn, or that Iceland has no native foxes? Which one do you think it is?
0: WhatsApp message Like a Gold now on 0744-232323. Gold Drive with Sandy Shah.
4: नमस्कार, रवि शर्मा रोज आपकी सेवा में हाजिर होता हूँ. मंडे टू फ्राइडे जुड़िएगा मेरे साथ 10 से 1 बजे के बीच. मंडे टू फ्राइडे मनोरंजन विद रवि शर्मा.

0: Mamster નું પાણીપુરી અને પાણીપુરી નો પાણી.
1: All Mamster products are nut free and made in Canada. Now available at quality food branches.
2: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रैवल कीजिए. दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए. आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प्स से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू.
3: विजिट mantrahalidays.co.uk और कॉल 02037736333 नाउ. एप्टा बॉन्डेड मंत्रा हॉलीडेज. व्हाट्स योर Travel Mantra.
4: Leica Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Gold Drive with Sandy Shah. Leica Extra Podcast. Be a part of the conversation. Details at leicaradio.com and the Leica Radio mobile app. Cool music for a super hot summertime on the Leica Radio Network.

0: Sandy Shah on Gold Drive. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: So £1 going to get you 88.41 Afghani, 164.17 Bangladeshi taka, 446.9 Sri Lankan rupees, 369.45 Pakistani rupees and 127.15 Indian rupees.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply.
2: Leica Gold.
0: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com. Or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: And gold trading at £97.71 per gram.
0: Gold Race was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
3: Like a gold.
1: So Ashwini, how are you?
4: Fantastic. How are you?
1: I think you need to change your responses.
4: Actually, fantabulous, mastam mast. What I write on the chats, wo main bata dun. No, mastam mast.
1: No, you see, this is a typical example why main se itni zyada baat nahi karta. Kyunki mujhe pata hai, seedha jawab aane nahi wala. So then you wonder why I don't talk to her much or I don't say much. Because
4: koi to aisa hona chahiye na?
1: We've got a very controlled. Nahi, aisa kahan likha hua hai? Aisa kahi hona chahiye.
4: Abhi, matlab, ek to aisa hona chahiye, baaki sab to matlab.
1: Kya?
4: Aapko seedhi seedhi answers dete hi honge. तो कोई परेशान करने वाला
1: इंसान वो जवाब दे जिससे मैं बात करूं कि मैं बात नहीं करता मुझे जवाब किसने देना है मैं आपसे कहना आपसे बात कर रहा हूं आप ये देन यू मेक देन यू आर द रीजन व्हाई आई डोंट टॉक टू
4: एनीबॉडी
1: एनीवे मूविंग ऑन इफ समबडी गेव यू एन ऑल पेड हॉलिडे एंड सेड राइट टिकट्स हम देते हैं खर्चे के पैसे हम देते हैं नेम मी द वन प्लेस एंड बी ओरिजिनल हियर वेयर इन द वर्ल्ड वुड यू गो ऑन योर ऑल एक्सपेंसेस पेड ट्रिप
4: वो ऑरोरा लाइट्स जहाँ पे है आइसलैंड में है ग्रीनलैंड में है
1: ओह यू वुड
4: यस
1: थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो
4: यस
1: आई शुड कैंसिल माय ट्रिप देयर आई बिकॉज़ आइसलैंड वाज ऑन माय बकेट लिस्ट आइसलैंड इज ऑन माय ट्रिप वेयर आई वुड लाइक टू गो एंड या आइसलैंड वाज द ओनली प्लेस आई एक्चुअली वांटेड टू गो बिकॉज़ इट्स कोल्ड आई वांट टू गो समवेयर रियली रियली कोल्ड
4: आइसलैंड इज कोल्ड
1: Thanks for confirming what I already know. वही कह रहा हूँ मैं इसलिए वहाँ जाना चाहता था क्योंकि वहाँ बहुत ठंडी होती है
4: आप एंटार्क्टिका भी जा सकते हैं
1: आप कब जा रही हैं
4: ये टिकट कब मिल रहा है
1: अच्छा
4: All paid.
1: इसका मतलब ये नहीं जा रही इसका मतलब मैं जा सकता हूँ Very good. ये या वो
4: जी
1: So, two songs. The first one is खुशियां ही खुशियां हो दुल्हन वही जो पी अमन भाई या मधुबन खुशबू देता है
4: मधुबन
1: थैंक यू सो यू वोटेड फॉर मधुबन
4: यू विल गो फॉर मधुबन आज पक्का आई एम श्योर
1: खुशियां ही खुशियां
4: यू पर्पसली डू दैट
1: हाँ क्योंकि मुझे तो पैसे मिलते ना पर्पसली करने के
4: आइसलैंड का टिकट आएगा
1: आइसलैंड का टिकट आएगा थैंक यू वेरी मच इंडीड फोक्स एवरीबॉडी हु हैज वोटेड द नेक्स्ट सॉन्ग हैज वन Ashwini is next on the evening show and as I always say if you enjoyed even one song on Drive well, why don't we try this again tomorrow between 4 and 7 it would be nice to have your company don't forget Gold Night some great music tonight as well but enjoy with Ashwini thank you for listening and yeah next song one all the best bye bye for now
0: Artist of the Week is brought to you by our new podcast Leica Extra stream it now and be a part of the conversation

0: Like a Gold, traffic and travel.
1: This is Martin with your travel. The M4 is still slowing this evening onto the elevated section eastbound as you head from Junction 3 Hayes to Junction 2 Brentford. Still slowing also on the A312 the partway southbound before the M4 Junction 3. On the A40 Western Avenue eastbound from the Denham roundabout to Park Road, the middle and outside lanes have been reopened. They had been closed due to an earlier accident. The A406 North Circular Road, heavy in both directions at the Hanger Lane gyratory, and it's slow on the A3 West Hill northbound between Tibbetts Corner and Upper Richmond Road. To the Tube and severe delays on the Piccadilly line eastbound between Acton Town and Arnos Grove. That's due to problems with the signals at Holborn.
2: Like a gold.
3: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
4: आपके घर में किसी प्रियजन की मृत्यु हुई है, इस दुख की घड़ी में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर अंतिम संस्कार की सभी रस्में ओम फ्यूनरल केयर करके देंगे। कैंटन रोड वेस्ट लंदन और इल्फर्ड ईस्ट लंदन में ओम फ्यूनरल केयर्स वेल वर्स्ड प्रीस्ट्स कैरी आउट ऑल द राइट्स एंड रिचुअल्स इन इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, मराठी, तमिल एंड अदर लैंग्वेजेस। कॉन्टेक्ट कीजिए कल्पेश पटेल ऑन 0208-922-3344-24-hour line.
5: किटी पार्टी हो या फैमिली का कोई भी ओकेजन हो या फिर बिजनेस रिलेटेड कोई भी गेट टुगेदर,
6: अब हर इवेंट बनेगा स्टाइलिश एट विवेक हाउस गॉडफादर एंड को। स्वादिष्ट साउथ एशियन खाना, 5-course lunch सिर्फ £35, जबरदस्त एम्बियंस और कन्वीनियंट कार पार्किंग अवेलेबल एट हॉलिडे इन वॉटफर्ड। तो देर किस बात की, बुकिंग के लिए व्हाट्सएप करें 07300998823।
7: London, are you ready? Raghavend presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December.
8: Dil ne ye kaha hai dil se bole chudiya.
7: One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
9: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वेम्बली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271।
7: Now, banking with ICICI Bank UK works beautifully together.
10: Your iPhone becomes your ICICI Bank UK card with Apple Pay. Simple, secure and ready whenever you are.
7: Tap to pay in store or online across your Apple devices.
10: And with global account linkage, view your UK current account and India savings account balances all in one place.
7: Plus, send money to India seamlessly with the Money to India app.
10: ICICI Bank UK, smarter banking right at your fingertips.
7: Apple Pay is available on compatible devices. Terms and conditions apply.
10: ICICI Bank UK PLC is authorised by the PRA and regulated by the FCA and PRA.

0: भाई जिन्होंने अभी अभी ट्यून इन किया है, आप सभी सुन रहे हैं लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ। आज आप और हम मना रहे हैं टेरिफिक ट्यूसडे। तो टेरिफिक ट्यूसडे की शुरुआत हमने कर दी ऐसी दीवानगी से, दीवाना फिल्म से अलका याग्निक और विनोद राठौड़ की आवाज़ में सुनाया आपको एक गीत। उसके बाद बहुत ही खूबसूरत गीत, वन ऑफ माय फेवरेट्स, सौतन फिल्म से जिंदगी प्यार का गीत है। अटेंडेंस रजिस्टर खुल चुका है। सारे के सारे प्यारे प्यारे लोग जिन्हें संगीत बेहद पसंद है, सारे धुरंधर आ रहे हैं और अपनी अपनी हाजिरी यहाँ पे अटेंडेंस रजिस्टर में लगवा रहे हैं। बिल्कुल जी, आइए आइए। और हमेशा की तरह पूछें आप सबसे, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है ना। सेकेंड डे ऑफ द वीक, शाम हो गई है, नया दिन, कुछ नए से आप, कुछ नए से हम। लेकिन शाम के लिए भी तो हम नए होते हैं ना, पूरे दिन भर के एक्सपीरियंसेस शाम तक हमें कुछ नया बना देते हैं। सुबह आपने जिस किसी मूड या एनर्जी से स्टार्ट किया था, शाम तक आपकी एनर्जी कैसी हो जाती है? आपके दिन भर के जो भी एक्सपीरियंसेस रहे, जो भी किस्से कहानियाँ आपके साथ में हुई, शाम की कहानी पे वो इफेक्ट करती है। बात करेंगे इन सभी चीज़ों के बारे में। हमेशा की तरह एक सवाल लाई है अश्विनी, बिल्कुल, और किसी लाइफ थियरी पे बात सुनाई कि आए हाय आज थोड़ा कटाक्ष बैठने वाला है। तैयार है आज की लाइफ थियरी के लिए? हाँ, अभी नहीं, कुछ ही देर बाद। सो आज का सवाल, आपके हिसाब से कार का सबसे पॉपुलर कवर कलर कौन सा है? कवर नहीं, ये क्या बोली यार, कार का सबसे पॉपुलर कलर कौन सा है? कौन से कलर की गाड़ियां आपके हिसाब से रास्ते पे ज़्यादा दिखती है? वाइट, ब्लैक, ग्रे स्लैश सिल्वर, ठीक है? ये तीन कलर्स में से आप बताइए, वाइट, ब्लैक या सिल्वर में से, ग्रे कर लो यार, चलो। इन तीनों कलर्स में से सबसे ज़्यादा आपके हिसाब से कौन से कलर की गाड़ी रास्ते पे दिखती है?
1: SBI UK Money Talk. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपी एंड 05 पैसे। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच, ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया UK ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट SBI UK.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। 7:33, इट्स 7:33 आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। मोहम्मद रफी की मस्ती भरी आवाज में गंगा जमुना, विच वॉज रिलीज इन 1961, उस फिल्म से नैन लड़ रही है। दिलीप कुमार की परफॉर्मेंस, इसमें जितना एनर्जेटिक डांस उन्होंने किया है और एंड में जिस तरीके से ढोलक तबला ये सारी जो इंस्ट्रूमेंट बजते हैं ना, तो मन प्रफुल्लित तो हो जाता है, मतलब दिल गार्डन गार्डन हो जाता है और बड़ा मज़ा आता है ये गीत सुनते हुए। अच्छा, तो लाइफ थियरी के बारे में आप लोग सभी सुनते हैं रोज इस समय इस शो में, जिसका नाम है द इवनिंग शो विद अश्विनी ऑन लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आज कौन सी लाइफ थियरी सुना रही हूँ? आज बात करने वाली हूँ द फायर थियरी के बारे में। तो फायर थियरी के बारे में बस इतना ही कह सकते हैं कि जब आग लगती है तो सब लोग जो हैं वो भागते हैं एक डायरेक्शन में। तो एक बार एक जंगल में आग लगी, सारे के सारे जानवर जो हैं वो एक डायरेक्शन में भागना शुरू हो गए। एक कछुआ था जो उल्टी डायरेक्शन में चल रहा था, जिस जगह आग लगी थी उस डायरेक्शन में जा रहा था। तो वहाँ से एक फॉक्स आया, कहता है कि क्या कर रहे हो यार, सारे जानवर देखो अलग डायरेक्शन में जा रहे हो और तुम आग लगी है उस डायरेक्शन में जा रहे हो, वो देखो सारे जानवर जा रहे हैं नदी के किनारे, वहाँ पे नदी है ना, वहाँ जाके वो बच जाएंगे। तो कछुआ कहता है कि भाई वो जो है वो जा रहे हैं नदी के पास में, जहाँ पे भूखे मगरमच्छ उनका इंतज़ार कर रहे हैं। मैं यहाँ जा रही हूँ जहाँ पे कल आग लग चुकी थी, वो आग बुझ चुकी है, वो दिख रही है काली काली धरती, मैं तो वहाँ जा रहा हूँ। तो फॉक्स देखता रहा और कुछ ही देर में चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी नदी किनारे से, क्योंकि वहाँ पे भूखे मगरमच्छ उन जानवरों को खा रहे थे। टॉर्टोइस धीरे धीरे धीरे उस ज़मीन पे जाके बैठ गया जहाँ की आग बुझ चुकी थी, क्योंकि वो आग कल लगी थी, बीता हुआ कल। अब इस कहानी का हमारी लाइफ थ्योरी से क्या संबंध है? बिल्कुल संबंध है। हम सभी भीड़ का एक हिस्सा बनना चाहते हैं, सब लोग जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं ना उसी डायरेक्शन में हम भी जाना चाहते हैं। इसका एक एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पे 11+ एग्जाम्स है ना, सारे के सारे पेरेंट्स जो हैं हर बच्चे को उसकी कैपेसिटी हो ना हो उनसे 11+ करवाना चाहते हैं, लेकिन ये जो भीड़ है इस भीड़ का हिस्सा जब बनते हैं तो क्या उस बच्चे की कैपेसिटी है या नहीं ये देखना चाहिए, और साथ में भीड़ सही कर रही है या गलत कर रही है हमें तो नहीं पता होता है ना, क्योंकि भीड़ का हिस्सा बने जा रहे हैं और जो इंसान सबसे सामने हैं वो क्या सोच के उस डायरेक्शन में जा रहा है ये हमें तो नहीं पता था। तो ज़िंदगी में अगर आपने एक अलग राह चुनी है भीड़ से हटके, तो खुद को कुछ अलग मत समझिए, मतलब कि कमज़ोर मत समझिए, और ये मत समझिए कि देखो सब लोग एक डायरेक्शन में जा रहे हैं और मैं कहाँ जा रही हूँ या जा रहा हूँ। जो डायरेक्शन या जो पाथ आपने चूज़ किया वो आपके लिए आपको सही लगा इसलिए आपने चूज़ किया, क्योंकि भीड़ में आधे लोगों को सच में नहीं पता होता है कि वो किस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। क्या आप भीड़ का हिस्सा हैं या आप किसी अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं? मुझे मत बताइए। द बर्निंग थियरी, इसका आंसर आप ही ढूंढिए। कैसी लगी थियरी ज़रूर बताइएगा।
0: ये है लाइका गोल्ड, The Evening Show with Ashwini.

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरिता सबरवाल। एवरी वीकेंड 4 till 7 बहुत सी मीठी मीठी बातें आपके साथ शेयर करती हूँ। सैटरडे एंड संडे मेरे साथ ही रहेंगे।
1: Get all the latest travel updates for London at Breakfast and Drive. This is Ash Winnie on Like a Gold.
2: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईलिंग रोड वेम्बली। फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com। फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com।
0: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
2: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
0: विजिट travelhubworld.com।
3: Mum, I'm outside. Yes, literally just landed.
4: Wait. How are you calling already? I'm still searching for Wi-Fi.
3: Oh, I'm on Simzy. Downloaded the eSIM back at Heathrow.
4: And you didn't pay those massive roaming charges?
3: Not a penny extra. Just a cheap local data plan. I even kept my UK number for bank alerts.
5: Heading home for the holidays? Skip the roaming drama. Get instant 5G data in India and 100 plus countries. Download the Simzy app today. Simzy, your global flow. T's and C's apply.
6: वॉटफुट में डिनर प्लान्स, थोड़ा क्लासी थोड़ा देसी।
7: तो आइए गॉडफादर एंड को विवेक हाउस बार एंड किचन।
6: फ्रॉम क्रिस्पी स्टार्टर्स, बटर चिकन, पनीर टिक्का मसाला से बिरयानी तक, फ्रेश ब्रेड एंड रिफ्रेशिंग ड्रिंक्स, हर बाइट में लाजवाब फ्लेवर्स और वाइब बिल्कुल प्रीमियम।
7: फ्रेंड्स, फैमिली या स्पेशल नाइट आउट, इसे यादगार बनाइए। विजिट विवेक हाउस वॉटफुट। कॉल 01923227274। बुक योर टेबल टुडे।
8: चावल हो बेस्ट, सब करे टेस्ट, दिशा राइस का है जमाना। दिशा बासमती राइस।
0: दिशा राइस नाउ अवेलेबल एट एशियन ग्रोसरी स्टोर्स नेशन वाइड। अवेलेबल एट सोनी कैश एंड कैरी, सिंग्सबरीज, कच्चा बाजार, समीर बाजार, मोर फूड्स, सीरा साउथ हॉल, डेगनम सुपरमार्केट, ऑल एक्सोटिक स्टोर्स इन रेडिंग एंड स्लाऊ एंड पिक एंड सेव कैंटन रोड। दिशा राइस, कम डाउन एंड टेस्ट द डिफरेंस।
9: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com। T's and C's apply.
10: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.

0: ये है लाइका गोल्ड 10:35 AM.
1: Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
2: For £1 you'll get 127.22 Indian rupee, 369.27 Pakistani rupee, 446.52 Sri Lankan rupee, 164.04 Bangladeshi taka, 88.31 Afghan Afghani, 172.08 Kenyan shilling, 1.32 US dollars, 63.09 Mauritian rupee.
3: Leica Radio.
1: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LAIKA. Download LemFi now. T's and C's apply.
4: LAIKA Gold.
1: Gold Rate. Brought to you by Pooja Sweets and Savories. PoojaSweets.com or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
2: Gold is currently trading at £97.46 per gram.
1: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers. PoojaSweets.com or visit us at Eastham, Hounslow or Crowley.
2: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, एक बार देखते हैं टाइम कितना हुआ है। इट्स 52 मिनट्स पास्ट 7। आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी। मैंने आप सबसे पूछा था कि आपके हिसाब से पॉपुलर कलर्स कौन से हैं कार के, तो मैक्सिमम आंसर आए हैं ग्रे। मैंने पूछा था वाइट, ब्लैक, ग्रे या सिल्वर, तो मैक्सिमम लोगों ने कहा कि भाई ग्रे कलर की कार्स बहुत दिखती है हमें रोड पे। मैंने पूछा था रोड पे कौन से कलर की कार दिखती है, ये आपकी फेवरेट भी क्या है, दोनों भी जवाब थे। सो मैक्सिमम लोग अगेन ग्रे कलर, लेकिन मोस्ट पॉपुलर कलर्स ऑफ कार कंसिस्टेंटली रैंक्स एज नंबर वन विच इज वाइट कलर ड्यू टू हाई विजिबिलिटी एंड बेटर हीट रिफ्लेक्शन इन वार्म क्लाइमेट्स। ब्लैक पॉपुलर फॉर इट्स स्लीक प्रीमियम लुक दो इट एब्जॉर्ब्स मोर हीट एंड लेस विजिबल नाइट, एंड वाइडली फेवर्ड जो है वो है ग्रे कलर।
1: This is Ashwini on Leica Gold.

0: एंड दैट वाज फ्रॉम कुछ कुछ होता है 1998 में ये फिल्म रिलीज हुई थी। तो 90s के बच्चे खुश, उसके बाद में 80s के बच्चे खुश हो गए। किशोर कुमार की आवाज़ में सागर फिल्म से सुनाया आप सभी को ये गीत। और अब इस एल्बम में क्या होने वाला है, कुछ इन्फॉर्मेशन जो शायद आपको पता हो, लेकिन जो मैं ये इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाई हूँ ना, हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये आप लोगों को पता होगी। ओके, तो अभी जब ये बैक टू बैक गाने चल रहे थे, तो ऑब्वियसली आई हैड माय चाय कॉफ़ी ब्रेक, होता है ना कि चाय कॉफ़ी ब्रेक होता है, सो आई जस्ट मेड ठंडा ठंडा कोल्ड कॉफ़ी फॉर माई सेल्फ। ओके, ठंडे में कॉफ़ी शुगर मिक्स किया, हाँ, एंड जब वो ठंडी कॉफ़ी गले से ऐसे नीचे बह के आती है, आय उठो, हंस क्यों रहे हो, जाओ ठंडी कॉफ़ी बनाओ खुद के लिए और साथ में। अब ये इन्फॉर्मेशन सुनो, बबल रैप। मैंने आप सबसे सवाल एक बार पूछा था कि जब भी आपके यहाँ कोई पैकेज आता है तो बबल रैप को बिना बबल फोड़े अगर फेंक दिया तो क्या ही फ़ायदा, फिर ये ह्यूमन लाइफ कोई फ़ायदे के नहीं, आप कमंडलू उठाइए और जाके हिमालय पे रहिए अगर आपने बबल रैप को कभी फोड़ा ना हो तो। लेकिन बबल रैप पता है आपको ओरिजिनली कैसे बना था? इट वॉज ओरिजिनली क्रिएटेड एज टेक्स्चर्ड वॉल पेपर, बट नो बडी वॉन्टेड इट, सो इन्वेंटर्स ने सोचा कि अब इसको फेंक तो नहीं सकते, इसका कुछ तो यूज़ करेंगे, तो पैकेजेस को प्रोटेक्टेड रखने के लिए उन्होंने इसका यूज़ शुरू किया, दैट वॉज बबल रैप। प्लेडो, जिससे बच्चे खेलते रहते हैं, तो बिफोर बिकमिंग अ चिल्ड्रंस टॉय प्लेडो वॉज डेवलप्ड टू रिमूव सूट फ्रॉम वॉलपेपर, अ क्लीनिंग प्रोडक्ट एक्सीडेंटली बिकेम अ क्रिएटिव आइकन। उसके बाद में चेनसॉ, द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न चेनसॉ वॉज क्रिएटेड बाई डॉक्टर्स, नॉट लंबरजैक्स, इट वॉज अ हैंड ऑपरेटेड सर्जिकल टूल यूज टू कट बोन ड्यूरिंग मेडिकल प्रोसीजर्स। माइक्रोवेव कैसे बना? द माइक्रोवेव ओवन ग्रू आउट ऑफ वर्ल्ड वॉर टू रडार रिसर्च। इन 1945 पर्सी स्पेंसर रियलाइज्ड अ रडार मैग्नेटन could also be used to heat the food, तब से माइक्रोवेव का यूज होने लगा। पोस्ट इट नोट्स, अ 3M साइंटिस्ट ट्राइड टू क्रिएट एन एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ग्लू एंड प्रोड्यूस अ वीक वन इंस्टेड। अब जितना स्ट्रांग होना चाहिए था ग्लू वो तो बना नहीं, दैट फेलियर बिकेम द रिपोजिशनेबल एडिसिव बिहाइंड द पोस्ट इट नोट्स। ऐसी ऐसी चीज़ें बनी हैं जब लोग रिसर्च करने गए, वो था वो लाइन है ना, जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना, ऐसा ही कुछ हुआ है इन इन्वेंशंस के साथ में। London, SBI UK, Manchester, Manchester. Send India like a radio network with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch. एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127 इंडियन रुपी एंड 127 रुपए। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और SBI योनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: State Bank of India UK offers savings products, business banking, buy-to-let mortgages and safe deposit lockers. Visit sbiuk.statebank to locate your nearest branch.

0: Fisher Rice now available at Asian grocery stores nationwide. Available at Sony Cash and Carries, Singsbury's, Kacha Bazaar, Samir Bazaar, More Foods, Sierra South Hall, Dagenham Supermarket, all exotic stores in Reading and Slough, and Pick and Save Canton Road. Disha Rice, come down and taste the difference.
1: श्रावण के पवित्र महीने में करें भगवान शिव की आराधना। परम पूज्य संत श्री चिन्मयानंद बापू जी के श्रीमुख से सुनिए श्री शिव महापुराण कथा। 13 अगस्त से 19 अगस्त तक हिंदू सनातन मंदिर ईलिंग रोड वैमली में। समय दोपहर बाद 3 बजे से शाम 7 बजे तक। नित्य कथा और महाप्रसाद की पावन व्यवस्था का आनंद लें। शिव महापुराण का अपने पूर्वज माता पिता के नाम से मूल पाठ, डेली यजमान और सेवा के लिए संपर्क करें 07930271। वेडिंग सेलिब्रेशंस, कॉर्पोरेट इवेंट्स, रागसन सब कुछ एफिशिएंटली हैंडल करते हैं। परफेक्ट लोकेशन ढूंढने से लेकर इनक्रेडिबल थीम्स डिजाइन करने तक, वर्ल्ड क्लास कुजीन से हर छोटी बड़ी रिक्वायरमेंट तक मैनेज करते हैं। 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हर इवेंट को खास बनाए। फौरन का फोन मिलाएं 02088390880 और विजिट ragasan.com। लोकेशन, डिजाइन, मैनेजमेंट या केटरिंग, रागासन।
2: लंदन, आर यू रेडी? Raga Events presents to you for the first time legend Udit Narayan and son Aditya Narayan performing live with Bade Mia Chote Mia this December. One date, one show, Sunday the 20th of December at the Ovo Arena, Wembley, London. Tickets available now at Ticketmaster and AXS. Visit raga.events. Exclusive radio partner, Leica Radio Network.
3: Dreaming of Europe and the UK? Travel with Mantra Holidays and explore the breathtaking Scottish Highlands, the dramatic landscapes of Snowdonia and the stunning coast of Cornwall. Then journey through Europe from the majestic Swiss Alps to romantic Paris and the timeless beauty of Italy.
4: Visit mantraholidays.co.uk or call 020-3773-633 now. APTA bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
5: साउथ हॉल ट्रेवल की एक और ऊंची उड़ान देखिए। दुबई की शान, फ्लाइट, होटल, साइट सींग, डेजर्ट सफारी, यानी दुबई में सारा इंतजाम और पैकेज की प्राइस बेहद कम। साउथ हॉल ट्रेवल का दावा है कि 24 घंटे के भीतर कहीं से कम में ला के दिखाएं तो ये रिफंड या डिफरेंस वापस कर देंगे। तो दुबई के लिए तैयार, यू डू द पैकिंग, दिल डू द प्लानिंग। कॉल साउथ हॉल ट्रेवल ऑन 02085748410। दैट्स 85748410।
6: साउथ हॉल ट्रेवल protected.
7: Like a Gold, officially London's number one Asian retro music station. Available in Greater London on 10:35 AM, DAB Digital Radio, Alexa and likeagold.com.
8: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
9: Soft and tender, like grandma's warm hug, Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.

0: Feel Good Track, brought to you by Derry Valley.
1: Happy Halwai brings your taste buds oodles of happiness with authentic gulab jamun, rasmalai, moti chur laddu and much more. Visit happyhalwai.com.
2: Ye hai, Leica Gold.
0: Feel Good Hits in the sun with Leica Gold.
3: मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ है, 8:30, इट्स 8:30. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. सो आप सबको मोहम्मद रवि और लता मंगेशकर की आवाज़ में मेरा फिल्म से सुनाया ये गीत. 1971 में ये फिल्म रिलीज हुई थी. नाउ विद दिस सॉन्ग मेरी यादें जुड़ी हैं बिकॉज मेरी आई यानी मेरी मम्मी को ये गीत पसंद था. एंड स्पेशली आई रिमेम्बर कसेट्स के ज़माने थे 90s में, ऑब्वियसली हमारे यहाँ पे जो एक कसेट्स की दुकान थी, माई मम यूज़ टू राइट द लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स उन्हें पसंद थी और हम जाके पूरे गाने जो रिकॉर्ड करवा के लाते थे. स्पेशली दिस सॉन्ग बहुत प्यारा है ना, इट इज़ रोमांटिक, लेकिन फिर भी मुझे ठहराव वाला लगता है गीत. आपको कैसा लगता है गीत जरूर बताइएगा. इमोशन ऑफ द डे, सो टेरिफिक ट्यूसडे मना रहे हैं आप और हम साथ में लता मंगेशकर एंड सुरेश वाडकर की आवाज़ में. प्यासा सावन से सुना रही हूँ आपको ये गीत. क्या लगता है टेरिफिक ट्यूसडे के लिए सही है? सीरियसली कल 34 डिग्रीज टेम्परेचर है, इतनी धूप होने वाली है. हम सब मिलके अगर मेघारे मेघारे चिल्लाए तो भी क्या मेघा के बरसने वाली है क्या? हाँ अभी तो नहीं, कल तो 34 है, एंजॉय करो. वॉल्यूम अप करिए, दिस इज सच अ फैंटास्टिक ट्रैक.
0: इमोशन ऑफ द डे. इमोशन

0: इमोशन ऑफ द डे,
1: इमोशन ऑफ द डे।
2: व्हाट अ लवली ट्रैक, मजा आ गया ना ये सुन के। अब कुछ हमारे लिसनर्स हैं जो कहते हैं कि तुम्हारे इस गीत ने हमको बुला लिया। तो भाई सारी गीत तो वैसे प्ले कर रहे हैं हम कि आप लेट लतीफ हो गए हैं, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। एंड हमारे बहुत ही प्यारे लिसनर हैं जिन्होंने कहा कि अश्विनी तुमने टॉटनहम कोर्ट रोड की बड़ी स्क्रीन्स के बारे में उस दिन जो थियरी सुनाई थी, तो मैं स्पेशली वो स्क्रीन्स देखने वहाँ पे गया एंड इट वाज वर्थ विजिटिंग टॉटनहम कोर्ट रोड स्टेशन के सामने लगी हुई बड़ी बड़ी स्क्रीन। वहाँ पे जो कंटेंट दिखाते हैं ना, वो देखने में बड़ा मज़ा आता है। कभी कभी ना ज़िंदगी में वो ठहराव जो है ना, वो ले लेना चाहिए, जो पॉज है वो ले लेना चाहिए, क्योंकि न जाने वो पॉज आपको क्या चीज़ें याद दिला दे। नेक्स्ट ट्रैक लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज़ में आंधी फिल्म से सुना रही, लेकिन उसके पहले
3: This is the Leica Radio Network across London, Manchester and the Midlands.
4: अब होगा वीकेंड और भी सुहाना द रितु शर्मा शो में एवरी वीकेंड 10 AM टू 1 PM ऑन Leica Gold Radio, Leica Radio Greater Manchester एंड Leica Radio Midlands पर।
2: Episode number 26 is out. You can watch and listen to this one. Reinvention and Entrepreneurship. Deep Raja speaks to Meenal Samra from Samaria Global Finance. And banking sector ke baare mein bahut sari gapshap hui hai yahan pe detail mein. Yahan pe aapko kaafi information milegi is podcast mein. Leica Extra Podcast available on Spotify, YouTube, Amazon, Apple and other major streaming platforms.
3: Leica Extra is here. This is Ash Winnie on Leica Gold.
5: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 Ealing Road Wembley. फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com. फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता। कॉल ट्रेवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com.
6: ट्रेवल हब, बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
5: एट ऑल प्रोटेक्टेड।
6: विजिट travelhubworld.com.
7: Dad,
8: what's wrong, beta?
7: The Indian rupee has skyrocketed, and it's the best time to send money to Daddy in India.
8: I will run down to the money exchange now.
7: No, Dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app, and you'll get a fast service right from your phone.
8: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
9: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
10: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका। अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत। 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ £1,890 से पूरी तरह फिटेड। और हाँ, मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी। तो इंतजार मत कीजिए, अभी कॉल करें 020-8150-2025 और विजिट meraboiler.com. T's and C's apply.
11: No need to fly back home this summer holiday. Come to Ambala and try out our Koya Barfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same barfi you get back home. Now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best gara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
12: Khakra crunch, bhakri munch, chikki sweet, papad beet, Pickles Heat. ये है जयमिन फूड्स का वाइब चेक।
13: Add देसी तड़का to your routine with जयमिन फूड के variety of snacks. खाखरा, नमकीन, पापड़, pickles, चिक्की, pot meals and much more.
12: जयमिन फूड्स देसी cravings available at nearest ethnic grocery stores.
14: sonatours.co.uk Japan Cherry Blossom Tour in March and April 2027. Book before the end of July and get up to $400 off. Call Sonatours on 0208-951-0111.
15: Minar Jewelers, Wandsworth's Business Award winners. Best Customer Service 2026. Come and find out why. Beautiful diamond engagement rings starting from £500. Phone 0208-767-7547.
3: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
16: Leica.
3: On this week's Leica Extra podcast, Deep Raja discusses reinvention and entrepreneurship with Meenal from Samaria Global Finance Limited.
0: Nowadays, it's getting more and more challenging because the banks, all the bigger financial institutions, or the lenders, or the investors, they have so many people approaching them on a day-to-day basis. So they need someone who can actually hit the ground running for them.
3: Leica Extra is here. Search for our podcast, Leica Extra, on all major streaming platforms. Ashwini, brightening up your weeknights.

0: This is Like a Gold. Currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: एक पाउंड के बदले आपको मिलेगा 127.13 इंडियन रुपी, 369.33 पाकिस्तानी रुपी, 446.68 श्रीलंकन रुपी, 164.13 बांग्लादेशी टाका, 88.26 अफगान अफगानी, 172.15 केनियन शिलिंग, 1.32 यूएस डॉलर्स, 63.12 मॉरिशियन रुपी.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code LIKA. Download LemFi now. T's and C's apply. Like a Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visitors in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.40 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visitors at Eastham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हो रखा है. इट्स 50 मिनट्स पास्ट 8. आप सभी ने ट्यून इन किया है लाइक अ गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइक अ रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर. दिस इज द इवनिंग शो विद अश्विनी. इस आवर का आखिरी गीत आपको सुनाऊं, लेकिन उसके पहले बात करते हैं वंडरफुल ट्रैक, द अमेजिंग ट्रैक. आंधी फिल्म से हमने आपके लिए ये गीत प्ले किया, लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार की आवाज में. अगेन वन ऑफ द ठहराव वाला गाना. और कितने सारे लिसनर्स के मैसेजेस आए, जब हर एक गीत पे आप लोगों की तरफ से मुझे फीडबैक आता है ना, मैं मुस्कुराते रहती हूँ यहाँ पे स्टूडियो में कि आपकी और मेरी चॉइस देखा कितनी मिलती है आपकी हमारी चॉइस. ओके जी, तो छोटी छोटी काइंडनेस के बारे में भी हम लोग बात करते रहते हैं, लेकिन ये ज़रा बड़ी वाली काइंडनेस वाला काम हुआ. तो सोशल मीडिया पे एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है, जहाँ पे एक ओवरलोडेड ट्रक हाईवे पे चलते समय अचानक एक तरफ झुकता दिखाई देता है, क्योंकि उसका टायर फट चुका है और उसका संतुलन जो है उसका बैलेंस बिगड़ने लगा. तभी एक कंटेनर ट्रक जो पास से गुजर रहा था, उसने फटाफट आके अपनी ट्रक को इस जो ओवरलोडेड ट्रक था उससे वहाँ पे सहारा दे दिया. तब पीछे कोई गाड़ी में था जिसने ये पूरा का पूरा जो क्लिप है ये रिकॉर्ड किया था. सोशल मीडिया पे ये बहुत वायरल हो रहा है. कभी कभी हमारी सूझबूझ जो है, फटाफट जो स्टेप्स हम लेते हैं, उससे कितने बड़े बड़े एक्सीडेंट्स अवॉइड कर सकते हैं इसका अंदाज़ा हमें भी नहीं आता. बस यही है कि उस मोमेंट पे आप कितना फटाक से, जो एक डिसीजन बोलते हैं ना फटाक से मतलब उतना ही इंस्टेंटली, किसे कितनी जल्दी आप डिसीजन लेते हैं उस पर निर्भर करता है कि कितनी सारी घटनाएँ टल सकती हैं. चलते हैं आखिरी ट्रैक की तरफ.
0: Reminisce those classics on Like a Gold. This is Ash Winnie on Like a Gold.
2: New world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
3: Location, location, location.
4: In real estate, location is everything. And this one is a winner.
3: Introducing Greens by Danio, a premium collection of townhouses and villas
4: located in Dubai in a prime location for high appreciation.
3: Step inside and walk into fully furnished townhouses and villas with premium Italian furnishings.
4: Step outside and enjoy 50+ amenities inside the master community.
3: And the best part, townhouses and villas Greens start from just £711,000.
4: To book, call our London office on 02039635757. Greens by Danube. Prime location.
3: High appreciation.
4: In Dubai.
5: Anuj Chopra Foundation proudly presents An Evening of Elegance, hosted by Anisa Nasir. Tayyar ho jaiye ek yaadgar sham ke liye, jahan ghazals milti hai Bollywood se.
6: Sham chalne lage.
5: With the legendary Anoop Chalota on Sunday, 30th August at Queen's Theatre, Romford. Doors open 5 p.m. Show starts 6 p.m. Ticket starts from £40. Book now at queens-theatre.co.uk. Radio partners, Leica Radio Network.
7: Discover unique Grand Prix holidays with flights, race tickets, and hand-picked stays. Combine iconic motorsport weekends with city breaks, beach escapes, or even cruise experiences for the ultimate getaway. Prices start from just £799 per person. Visit skylordcruiseandholidays.com or call 0192 388 3100. Atoll protected.
8: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Leica Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Leica Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive radio पार्टनर लाइका रेडियो नेटवर्क
9: इल्फर्ड. अब असली इंडियन फ्लेवर्स का मजा लीजिए.
10: बीकानेर वाला परंपरा भी
11: फेमस छोले भटूरे, राज कचौरी, मिठाई और बहुत कुछ आपका इंतजार कर रहा है. मिलते हैं 513-519 क्रैनब्रुक रोड, गैंसल, इल्फर्ड, IG26HA. कॉल 07555-506015.
0: दिस इज द लाइका रेडियो नेटवर्क. यू हर्ड. The Leica Group, consisting of Leica Radio and Leica Gold, is once again the number one Asian commercial group in Greater London. Advertise today across our four stations on 0207 132 1458 or sales at leicamedia.co.uk.
12: The Evening Show with Ashwini.
13: Leica Gold.
0: This is Leica Gold, non-stop classics.

वेलकम, दिस इज द थर्ड आवर ऑफ द इवनिंग शो विद अश्विनी। आशिकी फिल्म से सुनाया आपको अनुराधा पौडवाल और कुमार सानू की आवाज में मैं दुनिया भुला दूंगा। नेक्स्ट ट्रैक वॉज आशा भोसले एंड अमित कुमार की आवाज में लव स्टोरीज से थोड़ा मस्ती भरा गीत आप सबको सुनाया। तो गजल या कवाली में क्या सुनाने वाली, जल्दी जल्दी लिख कर भेजिए। आज की डेट है 28th of July, किसी का बर्थडे, किसी की एनिवर्सरी, किसी के लिए नया जॉब, किसी के लिए शायद आखिरी दिन, किसी के लिए न्यूट्रल, जो भी है। लेकिन आज और भी काफ़ी चीज़ें मनाई जाती हैं। आज मनाया जाता है वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे, नेशनल सॉकर डे, वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, नेशनल मिल्क चॉकलेट डे, नेशनल मरीन डे, फेस्टिवल ऑफ ब्रिटिश आर्कियोलॉजी, वर्ल्ड कंजर्वेशन डे, बफेलो सोल्जर्स डे एंड लव पार्क्स वीक। अब ये मुझे ज़रा इंटरेस्टिंग लगता है, लव पार्क्स वीक, जहाँ पे पार्क में अपनी फैमिली के साथ में जाके टाइम बिताना, वहाँ पे जो हरी हरी घास है, जो लॉन है, वहाँ पे बढ़िया सी

0: मैट डाल के वहाँ पे लेट जाओ, आसमान की तरफ देखो, उन पेड़ों की तरफ देखो, खाना पीना करो, पिकनिक मनाओ। सो ये पिकनिक अब कितने लोग अभी भी मनाते हैं आई डोंट नो, बट आई रिमेम्बर जहाँ से मैं आती हूँ अकोला शहर जो है हमारा महाराष्ट्र में, वहाँ पे पार्क के बाहर ना पानीपुरी की जो गाड़ियाँ हैं भेल की गाड़ियाँ वहाँ पे हुआ करती थी, पार्क के पास में आइसक्रीम वाला हुआ करता था, लॉलीज जो होती थी सब हुआ करता था। सो पार्क में जाने का मज़ा अपना होता था कि भेलपुरी खाई, आइसक्रीम खाई एंड आते समय पान खा लिया, ये वाली चीज़ें ज़रूर होती थी। भाई बच्चे कितने बच्चे हो लेकिन पान का एक अपना मज़ा हुआ करता था। विथ पार्क्स मेरी मेमोरी तो डेफिनेटली ये है, एंड वी यूज टू प्ले अ गेम कॉल्ड लगोरी। इफ यू नो लाइक देर आर 7 पत्थर एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं, फिर बॉल से आप वो फोड़ते हैं और दो टीम्स बनती हैं। सो वी यूज टू गो विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड वी यूज टू हैव फन। पार्क से रिलेटेड आपकी भी कोई मेमोरीज हैं मुझे जरूर बताइएगा। नेक्स्ट ट्रैक मध्यम लाइट कर लीजिए, म्यूजिक का जो वॉल्यूम है मध्यम रखिए, लाइट अब अगर बंद भी करना है बंद कर दीजिए या लाइट को डिम कर दीजिए। नेक्स्ट ट्रैक किशोर कुमार की आवाज में जहरीला इंसान से, सोचिए कौन सा गीत है।
1: Brightening up your weeknights. Send money to India with competitive rates with Yono SBI UK online and via the SBI UK branch.
0: एक पाउंड के बदले आपको मिलेंगे 127 इंडियन रुपीस। डोंट फॉरगेट टू एक्सचेंज इन ब्रांच ऑनलाइन और एसबीआई यूनो मोबाइल ऐप। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यूके ऑफर्स सेविंग्स प्रोडक्ट्स, बिजनेस बैंकिंग, बाय टू लेट मॉर्गेजेस एंड सेफ डिपॉजिट लॉकर्स। विजिट sbiuk.statebank टू लोकेट योर नियरेस्ट ब्रांच। टीज़ एंड सीज़ अप्लाई।

0: What a fantastic track, किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ में रूप तेरा मस्ताना से सुनाया ये गीत। फिल्माया गया था जितेंद्र और मुमताज पे। मज़ा आया ना गीत सुन के। मिला लेंगे घड़ियाँ, देखते हैं टाइम कितना हुआ। सो 9:25 हो चले हैं। आप सभी ने ट्यूनिंग किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंडन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। आर्टिस्ट ऑफ द वीक येसुदास के गीत आप सबको हम सुना रहे हैं। अगला ट्रैक जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो है दुल्हन वही जो पिया मन भाए, उस फिल्म से खुशियाँ ही खुशियाँ हूँ, येसुदास और हेमलता की आवाज़ में। साथ ही रंजीत रजवाड़ा जी का जो गज़ल्स का प्रोग्राम है, तो ये गज़ल का प्रोग्राम आप लाइव देख सकते हैं थर्सडे यानी गुरुवार को 30 जुलाई 7 बजे हैरो आर्ट्स सेंटर पर। अपनी टिकट्स हैरो आर्ट्स सेंटर पर आप जाके ले सकते हैं, ऑनलाइन बुक कर सकते हैं hairoarts.com पे। यूज़ द कोड लाइका रेडियो फॉर 10% ऑफ आपके टिकट्स पे जब आप ऑनलाइन बुक करेंगे। केवल जब आप ऑनलाइन बुक करेंगे लाइका रेडियो ये जब कोड आप यूज़ करते हैं तो 10% ऑफ मिलेगा। एक्सक्लूसिव रेडियो पार्टनर्स लाइका रेडियो नेटवर्क। नेक्स्ट इज आर्टिस्ट ऑफ द वीक।
1: Dad, dad, dad!
2: What's wrong, beta?
1: The Indian rupee has skyrocketed and it's the best time to send money to daddy in India.
2: I will run down to the money exchange now.
1: No, dad, you can do it from your sofa. Download the Yono SBI UK mobile app and you'll get a fast service right from your phone.
2: Oi, bale bale! I'm gonna tell all my friends to download the Yono SBI UK mobile app and take advantage of their competitive rates.
3: SBI UK regulated by the FCA and PRA.
4: No need to fly back home this summer holiday. Come to Amba and try out our Khoya Burfi, made from pure buffalo milk. Yes, it's the same burfi you get back home, now made in England with milk from Ambala's own herd of buffalo. Only from Ambala. Don't take our word for it. Come and taste it for free this month. Now also doing the best kara chai, masala chai and elaichi chai. Just like back at home. Ambala, heritage you can taste. Visit ambala.co.uk.
5: Herald, new world of eco-friendly disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaways and food delivery services. Order your free Herald catalogue today. Call on 0208 507 7900 or download the catalogue from heraldplastic.com. Herald is a manufacturer of high-quality, eco-friendly and cost-effective disposables for restaurants, cafes, caterers, food takeaway and delivery businesses. Herald disposables available at food services, cash and carries and with disposable supplies to trade. Visit heraldplastic.com.
6: Are you sitting on a mortgage and getting nothing back? What if your remortgage paid you?
7: At Cashback Remortgages, we find you deals that put real money back in your pocket. Not just a lower rate, but actual cash. Hundreds, sometimes thousands of pounds just for switching.
6: Our expert advisors have helped thousands of homeowners across the UK remortgage smarter and walk away richer.
7: Call us today on 0208 706 0915. That's 0208 706 0915. Or visit cashbackremortgage.co.uk.
6: Cashback Remortgages. Your mortgage should work for you.
8: The voice that defined a complete era. The songs that touched millions. She's coming to London soon.
9: Laika Gold, London ka number one Asian retro music station. Ab available hai Greater London mein 10:35 AM par, DAB digital radio par, Alexa pe bolo play Laika Gold aur online suno laikagold.com pe.
10: Artist of the Week is brought to you by our new podcast, Laika Extra. Stream it now and be a part of the conversation.

0: है
1: Lyca Gold.
2: Hello there, my name is Deep Raja and I do the weekend breakfast show from 7 a.m. Saturdays and Sundays. Lyca Gold in London, the Midlands and Manchester.
3: This is Ash Winnie on Lyca Gold.
4: travelhubworld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं बाय ओपनिंग देयर थर्ड ब्रांच ऑन 2 ईमिंग रोड वेम्बली फाइंड द बेस्ट प्राइस ऑन एनी होटल एनीवेयर इन द वर्ल्ड ऑन travelhubworld.com फ्लाइट्स एंड हॉलीडेज हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता कॉल ट्रैवल हब 24/7 और 0208-782-8833 और विजिट travelhubworld.com
5: ट्रैवल हब बेस्ट सर्विस विद अनबीटेबल प्राइस
4: एट ऑल प्रोटेक्टेड
5: विजिट travelhubworld.com
6: Experience an unforgettable evening of timeless ghazals. The Prince of Ghazal, the youngest ghazal maestro, Ranjit Rajwara. Performing live in London on Thursday, 30th of July at Harrow Arts Centre. Book your tickets now at harrowarts.com. Lyca Radio Network listeners can enjoy 10% off using the promo code Lyca Radio. Hurry, limited seats remain for this intimate live concert. Tickets start from just £25. The exclusive Radio Partner, Lyca Radio Network.
7: यूरोप और यूके के सपने देख रहे हैं तो मंत्रा हॉलीडेज के साथ ट्रेवल कीजिए दिल की धड़कने बढ़ा देने वाले स्कॉटिश हाइलैंड्स, स्नोडोनिया के अफसानवी लैंडस्केप्स और स्टनिंग कोस्ट ऑफ कॉर्नवॉल को एक्सप्लोर कीजिए आपका सफर होगा मैजेस्टिक स्विस एल्प से लेकर रोमांटिक पेरिस और टाइमलेस ब्यूटी ऑफ इटली के थ्रू
8: विजिट mantrahollidays.co.uk और कॉल 0203-773-633 नाउ एप्टा Bonded. Mantra Holidays. What's your travel mantra?
9: Search is changing.
10: Customers aren't just using Google anymore.
9: They're asking AI.
10: And AI doesn't show 10 websites. It recommends one answer.
9: One business, one recommendation.
10: So, when someone asks AI, who's the best company for this?
9: Will your business be the answer?
10: Or the one that got left behind?
9: The future of search has already started.
10: Have you? Visit HartyHanks.com and make sure AI recommends you.
9: Harty Hanks, the digital agency that doesn't play safe.
11: इस महीने मेरा बॉयलर लेकर आया है प्री बुकिंग सेल का शानदार मौका अब सभी बॉश बॉयलर्स पर सीधे £350 की बचत 25 किलोवाट बॉयलर सिर्फ 1890 पाउंड से पूरी तरह फिटेड और हाँ मिलेगी आपको 7 साल की बॉश गारंटी तो इंतजार मत कीजिए अभी कॉल करें 0208150-2025 और विजिट meraboiler.com टीज एंड सीज अप्लाई
3: Lyca Radio Network, proud hospitality partner, Ragasan. Making summer feel better. This is Lyca Gold.

0: currency updates are sponsored by LemFi mobile app. Send money to India, Pakistan and Bangladesh swiftly from your phone.
1: For £1, you'll get 127.09 Indian rupee, 369.11 Pakistani rupee, 446.46 Sri Lankan rupee, 164 Bangladeshi taka, 88.33 Afghan afghani, 172.03 Kenyan shilling, 1.32 US dollars, 63.08 Mauritian rupee.
2: Leica Radio.
0: Are you thinking of sending money to India, Pakistan or Bangladesh? Then think LemFi. LemFi's best exchange rate and money transfers. Earn an additional £5 cash back when you use the code Leica. Download LemFi now. T's and C's apply. Gold Rate, brought to you by Pooja Sweets and Savories, poojasweets.com, or visit us in Tooting, Kingsbury and Cardiff.
1: Gold is currently trading at £97.40 per gram.
0: Gold Rate was sponsored by Pooja Sweets, one of the best quality vegetarian food suppliers, poojasweets.com, or visit us at East Ham, Hounslow or Crowley.
1: चलिए मिला लेंगे घड़ियां, देखते हैं टाइम कितना हुआ। इट्स 42 मिनट्स पास्ट 9। नाम से विनी ट्यून इन किया है लाइका गोल्ड रेडियो इन लंदन एंड लाइका रेडियो इन ग्रेटर मैनचेस्टर। तो गजल या कवाली मैं क्या सुनाने वाली? जी हाँ, बिल्कुल मैं गजल सुना रही हूँ जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज़ में। कौन कहता है ये गजल आप सुनेंगे बस कुछ ही देर में। एंड आखिरी ट्रैक ऑफ दिस आवर विल बी यार की खबर मिल गई। जिनको यार की खबर मिली है कंग्रेचुलेशंस, जिनको नहीं मिली ठीक है यार, आराम से सो जाओ ना, ठीक है, कभी कभी इट्स ओके, थोड़ा स्पेस भी होना चाहिए। राम बलराम फिल्म से सुनाएंगे आप सबको आशा भोसले एंड किशोर कुमार की आवाज़ में वो गीत। अच्छा याद रखिए, गोल्ड नाइट ओवरनाइट सर्विस ज़रूर सुनिएगा, लाइका रेडियो 90s, लाइका रेडियो पंजाबी, लाइका गोल्ड 2। ओके एंड कल ओए होए क्या बात है, कल आपका हमारा मतलब मेरा तो है ही फेवरेट डे, अब आपका भी फेवरेट डे बन गया है वेंसडे, मिड वीक डे जो है। तो दो दिन इधर एंड दो दिन उधर वाला शो मैं लेके आऊँगी कल। फील गुड वेंसडे मनाएंगे आप और हम साथ में, हमेशा की तरह मस्ती मज़ा इंटरेक्शन गपशप सवाल कोई लाइफ थ्योरी, आप लोगों के फीडबैक, आप लोगों के स्माइली, आप लोगों के इमोजीज आते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही साथ देते रहिएगा मंडे से लेके फ्राइडे तक शाम 7 से 10 रहता है आपका और मेरा साथ। और हमेशा की तरह यही कहेंगे भाई प्यार ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, तो प्यार दो प्यार लो। एंड पावर का यूज़ तो किसी को बर्बाद करने के लिए लोग करते हैं, आई एम श्योर आप लोग नहीं करते। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसे कॉम्प्लिकेटेड ना बनाएं, अपना खूब ख्याल रखो, प्लीज़ कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड। कल 34 डिग्री टेम्परेचर है, मिलते हैं कल दोपहर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।
0: ये है लाइका गोल्ड।
3: This super hit song is proudly sponsored by Tilda Basmati Rice. Discover the serious delicious possibilities with Tilda.
0: Feel good track. Brought to you by Dairy Valley.
4: Soft and tender, like grandma's warm hug. Dairy Valley Paneer is made with natural ingredients and zero preservatives. Visit dairyvalley.net.
0: Ghazal.

0: hits. Hit tracks non-stop throughout the night. Like a Gold on 10:35 AM.
1: TravelHubWorld.com कामयाबी के शानदार 22 बरस सेलिब्रेट कर रहे हैं by opening their third branch on 2 Ealing Road, Wembley. Find the best price on any hotel anywhere in the world on TravelHubWorld.com. Flights and holidays हमसे सस्ता कहीं नहीं मिल सकता. Call TravelHub 24/7 on 0208-782-8833 or visit TravelHubWorld.com.
2: TravelHub, best service with unbeatable price.
1: At all protected.
2: Visit TravelHubWorld.com.
3: चलो जाइए एक नवा सफर पर.
4: सिरीन हॉलीडेज अपनी पूर्व अफ्रिकाना स्थलों की मुलाकात लेवा आमंत्रण आपे छे. कंपाला, नाइरोबी, मुंबासा, जांजिबार अने दारेसलाम साथे जिंजा अने मचीसन फॉल्स.
5: बस पैक करो अने रिलैक्स थई जाओ.
4: केम के आपनी सफर अमारी सफर छे. वधु माहिती माटे
5: कॉल करो दीप्ति पंड्या ने
4: 0116266481 पर. वधु माहिती माटे लॉग इन करो sirinholidays.co.uk पर.
6: Celebrate Krishna Janamashtami in a truly vibrant way. Join us on Sunday the 30th of August from 2 p.m. to 8 p.m. at Navnath Centre, Printing House Lane, Hayes, UB3 1AR. Live music, Ramayan play, Ras Leela, delicious food, fun fair, shopping and free entry with free parking. Book a stall for your business before the 15th of August by calling Ramesh Shah on 07742 045 154. Exclusive radio partner Leica Radio Network. This ad is sponsored by Jamin Foods.
7: You know how fans shout at football matches?
8: Oh, wake up!
7: That's because sound is the most effective way to tell the players they're rubbish. Works in advertising too. Because when you amplify your advertising using radio, your campaign is 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
0: Leica Radio Network. Proud hospitality partner, Ragasan.
9: आवाजों में ताकत होती है जब वो सही जगह तक जाती है. लाइका रेडियो और लाइका गोल्ड आपकी आवाज बन सकते हैं. ऑन एयर हो, ऑनलाइन या ऑन ग्राउंड, हर प्लेटफॉर्म पर आपका ब्रांड चमकेगा. संपर्क करें 0207-132-1458 या ईमेल sales@laikaradio.com.
10: सारी रात बॉलीवुड क्लासिक्स का साथ सिर्फ लाइका गोल्ड पर.

0: ये है लाइका गोल्ड। भारत या पाकिस्तान जाने की सोच रहे हैं तो एयर टिकट साउथ हॉल ट्रेवल से खरीदिए।
1: मगर साउथ हॉल ट्रेवल से ही क्यों?
0: क्योंकि उनसे ज्यादा सस्ती टिकटें कहीं नहीं मिलेंगी।
1: गारंटेड।
0: बुकिंग करवाएं और उसके बाद 24 घंटों के भीतर कहीं से भी सस्ती ला के दिखाएं तो ये फुल रिफंड या प्राइस डिफरेंस वापस कर देंगे। साउथ हॉल ट्रेवल
1: 02085748410।
0: 24 घंटे किसी भी वक्त फोन करें 02085748410। एट ऑल प्रोटेक्टेड।
2: Ears are great, aren't they? One on each side of your head for stereo. It's because of ears that radio ads can amplify your advertising. 40 million adults listen to commercial radio every week. That's 80 million ears, give or take. See radio differently at radiocentre.org.
3: Sari Raat, Bollywood classics ka saath. Sirf like